0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
2: This location from Tel Aviv
1: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
3: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
4: The Ayatollah Khamenei is gone.
5: There has been a missile attack right behind you,
6: and we need to rush into a shelter.
7: Heading there.
8: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
1: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
9: So many attacks.
1: The chaos and cries of disaster zones. To fight it.
10: Hello and welcome. My name is Reet Kaur Sahani and you're watching NDTV. With the headlines coming up for you, let's take you through them. Prime Minister Modi has released his fourth Instagram video in a week, hailing the passage of the Anti-Paper Leak Bill and reiterating the government's resolve to crack down on the exam mafia. A zero FIR has been registered over alleged abusive remarks against the Prime Minister during the protest. The case has reignited the debate over where free speech ends and hate speech begins. The Delhi government has decided to review protest-related cases with relief, likely for many protesters. However, authorities say that those with serious criminal backgrounds will not benefit from the move. With the Anti-Paper Leak Bill now passed, the Parliament is set for its next political showdown. The opposition is preparing to raise the alleged Chanda Chori issue, setting the stage for another heated debate. A political remark has now snowballed into an academic controversy. More than 200 academics have come out in support of the IIT Madras director, criticising Priyanka Gandhi's comments and calling for a more respectful public discourse. Well, Prime Minister Modi has once again chosen Instagram to communicate directly with the country. In his fourth video message within a week, the Prime Minister welcomed Parliament's passage of the Anti-Paper Leak Bill, calling it a major milestone in the government's efforts to secure the examination system. While listing the steps taken so far, the Prime Minister spoke about the creation of a special task force, the setting up of fast-track courts and broader education-related reforms. He also reiterated that the paper leak mafia will not be spared. The latest message is part of his sustained digital outreach by the Prime Minister, with each of his recent Instagram videos focusing on exam reforms, student concerns and the government's response to paper leaks.
11: Sathiyo, Vishwasta Pariksha Paddhati. Iske liye hum lagataar ek ke baad ek kadam utha rahe hain. टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के सपनों को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
10: Let's move on to more updates coming in at this hour. Well, a woman protester at Jantar Mantar, whose video abusing the Prime Minister triggered outrage, has now been booked. While another woman who abused the security personnel has now issued an apology. An FIR has also been registered against Ruchika Singh at a police station in Noida over alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. Well, the complaint alleges that the slogans insulted the dignity of the Prime Minister's office and could disturb public peace. The case has now been transferred to the Sansad Marg police station in the national capital, which will now carry out the investigation and decide on the next course of legal action. Well, CGP spokesperson Saurav Das, meanwhile, has condemned the police action, saying that criminal proceedings and FIR against the protester are illegal.
12: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
13: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए, आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेन ज़ी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया? आप क्या सोच रहे थे?
14: एक्चुअली मैम, हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था। मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया। और उसके बाद जब मैं घर आई, उसको अपलोड की, तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था। बट लोगों ने, मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे, ये आरपीएफ
13: पर्सनल
14: आरएएफ वाले थे।
13: एक ही ग्रुप होता है सबका,
14: किया नहीं था, बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया। और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, ये कर देंगे।
13: ठीक है, बट आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा। आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला?
14: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को, उनको, लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान।
10: Let's track some more updates coming in from the national capital. Now the Delhi government has announced that no legal action will be taken against those booked over the NEET UG protest. 13 FIRs were registered by the Delhi police. But the government says that arrests and detentions will now be reviewed and the release process will be expedited. The government has also made it clear that no further action will be taken and the cases will be treated as closed, with the decision approved by the Lieutenant Governor. However, the relief will not extend to history cheaters or those with criminal antecedents. This is in line with the Supreme Court's directions. Let's also listen in to the reactions coming in on this.
15: जिसके इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा। उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए।
10: Well, with the Parliament now clearing the anti-paper leak bill, the focus is now likely to shift on the next flashpoint, the Ram Temple donation theft. The opposition, remember, is now preparing to put the spotlight on the alleged Chanda Chori. Samajwadi Party member parliaments, along with the other opposition member parliaments, have held a symbolic protest in the Parliament complex yesterday, carrying a donation box. The opposition says the issue concerns the faith of millions and is now demanding discussion inside of the Parliament. This comes as the Supreme Court has, remember, tightened the oversight of the probe. The top court recently directed the reconstituted SIT to file a status report within 2 weeks and has even asked the Uttar Pradesh government to induct a forensic auditor into the investigation team.
16: धन की चोरी हो गई, बताइए। प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, ये महापाप है। हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया इन्होंने, जो आम जनता श्रद्धावान है, प्रभु पे जो चढ़ाया, ये पाप नहीं महापाप है, ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी।
17: तो चाहते हैं कि चंदा चोरी हुई है राम राम राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो भगवान राम जी के जिस तरह से चंदे में, दान में, लोगों के संकल्प में, लोगों की श्रद्धा और निष्ठा की लूट हुई, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है।
18: करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाया है, अयोध्या को कलंकित किया है, अयोध्या को कलंकित किया है। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे, इनको प्रभु, ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे, पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा।
19: मैंने स्वयं नोटिस दी है, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी की गई, डकैती की गई, भगवान राम को लूटा गया, भाजपा ने मंदिर नहीं बनवाया कोई कानून लाकर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि एक ट्रस्ट बनाइए और मंदिर बनाइए। मंदिर के नाम पे उन्होंने लूट लिया, 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 17 करोड़ में खरीदी। खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी, पदाधिकारी जिम्मेदार पद पर आसीन। 111 करोड़ लग गया उसके उद्घाटन में, बल्ली शामियाना इसमें। लोगों ने कारें खरीद ली, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, 40 दिन में 70 बार लूट पकड़ी गई।
20: जो सच है वो सच्चाई सामने आ रही है। जब राम मंदिर का विश्वस्त मंडल ये प्रधानमंत्री और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, तब नियुक्त करते समय हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता है, कर्मठता के साथ भरे हुए, इस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने कही थी। अब वो खोखली साबित होने के बाद, इतना ही नहीं तो चोरी साबित होने के बाद, उसकी जिम्मेदारी भी देश के पंतप्रधान और गृह मंत्री को लेना चाहिए।
10: Well, it's time for a short break. Slipping into a short break, more news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: the national capital, which will now carry out the investigation and decide on the next course of legal action. Well, CGP spokesperson Saurav Das, meanwhile, has condemned the police action, saying that criminal proceedings and FIR against the protester are illegal.
1: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
2: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए. आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेंजी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया? आप क्या सोच रहे थे?
3: एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था. मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था. मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए. तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था, बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो. जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे, ये आरपीएफ
2: पर्सनल
3: आरएएफ वाले थे.
2: एक ही ग्रुप होता है सबका.
3: मैं ऐसा कुछ किया नहीं था, बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, ये करते.
2: ठीक है, बट आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा. आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला?
3: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने
0: Let's track some more updates coming in from the national capital. Now the Delhi government has announced that no legal action will be taken against those booked over the NEET UG protest. 13 FIRs were registered by the Delhi police. But the government says that arrests and detentions will now be reviewed and the release process will be expedited. The government has also made it clear that no further action will be taken and the cases will be treated as closed, with the decision approved by the Lieutenant Governor. However, the relief will not extend to history cheaters or those with criminal antecedents. This is in line with the Supreme Court's directions. Let's also listen in to the reactions coming in on this.
4: जिसके इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा. उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए.
0: Well, with the parliament now clearing the anti-paper leak bill, the focus is now likely to shift on the next flashpoint, the Ram Temple donation theft. The opposition, remember, is now preparing to put the spotlight on the alleged Chanda Chori. Samajwadi Party member parliaments, along with the other opposition member parliaments, have held a symbolic protest in the parliament complex yesterday, carrying a donation box. The opposition says the issue concerns the faith of millions and is now demanding discussion inside of the parliament. This comes as the Supreme Court has, remember, tightened the oversight of the probe. The top court recently directed the reconstituted SIT to file a status report within 2 weeks and has even asked the Uttar Pradesh government to induct a forensic auditor into the investigation team.
5: धन की चोरी हो गई बताइए प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया ये महापाप है हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया इन्होंने जो आम जनता श्रद्धावान है प्रभु पे जो चढ़ाया ये पाप नहीं महापाप है ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी
6: तो चाहते हैं कि चंदा चोरी हुई है राम राम राम मंदिर की हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ तो भगवान राम जी के जिस तरह से चंदे में दान में लोगों के संकल्प में लोगों की श्रद्धा और निष्ठा की लूट हुई हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है
7: करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाया है अयोध्या को कलंकित किया है अयोध्या को कलंकित किया है इनको भगवान माफ नहीं करेंगे इनको प्रभु ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा
8: मैंने स्वयं नोटिस दी है अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई चढ़ावा में चोरी की गई डकैती की गई भगवान राम को लूटा गया भाजपा ने मंदिर नहीं बनवाया कोई कानून लाकर बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि एक ट्रस्ट बनाइए और मंदिर बनाइए मंदिर के नाम पे उन्होंने लूट लिया 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 17 करोड़ में खरीदी खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी पदाधिकारी जिम्मेदार पद पर आसीन 111 करोड़ लग गया उसके उद्घाटन में बल्ली शामियाना इसमें लोगों ने कारें खरीद ली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया 40 दिन में 70 बार लूट पकड़ी गई
9: जो सच है वो सच्चाई सामने आ रही है जब राम मंदिर का विश्वस्त मंडल ये प्रधानमंत्री और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया तब नियुक्त करते समय हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता है कर्मठता के साथ भरे हुए इस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने कही थी अब वो खोखली साबित होने के बाद इतना ही नहीं तो चोरी साबित होने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी देश के पंतप्रधान और गृह मंत्री को लेना चाहिए
0: Well, it's time for a short break. Slipping into a short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: The Delhi government has decided to review protest-related cases with relief likely for many protesters. However, authorities say that those with serious criminal backgrounds will not benefit from the move. With the anti-paper leak bill now passed, the parliament is set for its next political showdown. The opposition is preparing to raise the alleged Chanda Chori issue, setting the stage for another heated debate. A political remark has snowballed into an academic controversy. More than 200 academics have come out in support of the IIT Madras director, criticizing Priyanka Gandhi's comments and calling for a more respectful public discourse. This is the top story of the hour. Well, Prime Minister Modi has once again chosen Instagram to communicate directly to the country. In his fourth video message within a week, the Prime Minister welcomed Parliament's passage of the anti-paper leak bill, calling it a major milestone in the government's efforts to secure the examination system. Listing the steps taken so far, the Prime Minister also spoke about the creation of a special task force, the setting up of fast-track courts, and broader education reforms. He also reiterated that the paper leak mafia will not be spared. The latest message is a part of a sustained digital outreach by the Prime Minister, with each of his recent Instagram videos focusing on exam reforms, student concerns, and the government's response to paper leaks.
1: Sathiyo, Vishwasta Pariksha Paddhati. इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं. टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है.

0: और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और माय कॉलीग ऐश्वर्या जॉइंस अस ऑन द ब्रॉडकास्ट टू शेड मोर लाइट ऑन दिस। ऐश्वर्या, एन इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ही हैज रिलीज्ड अनदर इंस्टाग्राम वीडियो। वॉक अस थ्रू द डिटेल्स। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइम मिनिस्टर सेइंग टू द स्टूडेंट्स?
2: Well, certainly fourth Instagram video in last 1 week by Prime Minister Narendra Modi, and that clearly states that how Prime Minister wanted to send across his message directly to the youth of this country, to the students of this country via Instagram, because it was all about this social media platform where a person sitting in the United States made an Instagram account, and then millions of followers joined in. Certainly after that, this Instagram account was followed by many others, which led to a huge movement and protest in Jantar Mantar. And this was the way of medium where Prime Minister also spoke in the past as well. And now finally, when in the Lok Sabha and Rajya Sabha, the Anti-Paper League Bill has been passed, which will pave way for an act and law which will... those who indulge in such practices of paper leak will not be spared, and enough punishment will be given. Prime Minister Narendra Modi, they're coming out on Instagram and hailing the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha, the members who spoke in length about this particular bill, and also assured the students that this is just one step forward. There are many other important steps that the government is going to take in the near future to ensure that paper leak stops in the country. And the welfare of the students and youth is the topmost priority of this government.
1: Absolutely, Ishwara. Shortly after the bill has been passed, the Prime Minister has taken to Instagram once again and has released a video message for the students. Thank you so much for joining us and bringing us those details. Let's take you through more developments coming in at this hour. An important update coming in as a woman protester, Jantar Mantar, whose video abusing the Prime Minister has triggered outrage, she's now been booked. While another woman who abused the security personnel has now issued an apology. An FIR has also been registered against Ruchika Singh at a police station in Noida over alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. The complaint alleges that the slogans insulted the dignity of the Prime Minister's office and could also disturb public peace. The case has now been transferred to the Sansat Marg police station in the national capital, which will now carry out the investigation in the case and will also decide on the next course of legal action. On the other hand, CJP spokesperson Saurav Das has now come out and condemned the police action, saying that criminal proceedings in FIR against any protester is illegal.
3: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
1: All right, my colleague Ishika joins us on the broadcast. Ishika, an important update now coming in. A case has now been registered against a Noida woman for allegedly abusing the Prime Minister. Walk us through the details of the case. Where does this stand at this hour? We're also seeing some objections come in from the CJP spokesperson, Saurav Das.
4: Well, Reet, as you rightly mentioned, we are now seeing that, in fact, a woman protester has now been booked by the Delhi police. And in fact, it has, it is over the objectionable remarks that she allegedly made against the Prime Minister. Let me tell you that this case was first registered in Noida and now has been transferred to the Sansad Marg here in Delhi. And in fact, there is, in fact, another woman who had also insulted the security personnel, but now she has come out with an apology. Now, this woman, Ruchika, that we are talking about, she so far hasn't come out with any apology, and that is why the FIR has been, has been done in this particular case. Now, remember that this comes after the Delhi police, in fact, had done a compiled report over, all of these X handles where there were objectionable posts against the Prime Minister and against the security personnel. So this is a part of that. But certainly the CJP, that is the Cockroach Janata Party, has now come out and condemned this, saying that the language might be wrong, but, booking the protester in this particular case is certainly not right. So certainly remains to be seen as to how the situation pans out in the coming days. Over to you.
1: All right, absolutely, Ishika. Do stay on with us on the broadcast as we take our views through important details coming in. Remember that NDTV has also spoken to the controversial influencer who drew flak over a reel on the RAF personnel and was forced to apologize. Listen into that conversation with Shraddha Singh and what she had to say.
5: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया क्या आपको जेंजी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया आप क्या सोच रहे थे
6: एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है मुझे डिलीट कर देना चाहिए तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं ये वो जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने कोई गाली नहीं दी है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे ये आरपीएफ
5: आरएएफ पर्सनल
6: आरएएफ वाले थे
5: एक ही ग्रुप होता है सबका
6: किया नहीं था बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे ये करते
5: ठीक है बट आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला
6: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ मैं ऐसे लोगों को उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी वो मैंने
1: All right, let's turn our attention to more updates coming in at this hour. With the Parliament clearing the anti-paper leak bill, the focus is now likely to shift on the next flashpoint, the Ram Temple donation theft case. The opposition now is preparing to put the spotlight back on the alleged Chanda Chori. Samajwadi Party member parliaments along with other opposition member parliaments have held a symbolic protest inside the parliament complex yesterday. They carried a donation box to protest. The opposition says that the issue concerns the faith of millions and is now demanding a discussion to be held inside the parliament. This comes as the Supreme Court has tightened the oversight of the probe. The top court recently even directed the reconstituted SIT to file a status report within the next 2 weeks and has even asked the Uttar Pradesh government to induct a forensic auditor into the investigation team. Listen into the reactions coming in on this.
7: Ram dhan ki chori ho gayi bataiye. Prabhu Ram ke upar jo chadhava aaya wo chori ho gayi. Shraddha ke saath jin logon ne chadhava diya. Ye mahapaap hai. हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया इन्होंने जो आम जनता श्रद्धावान है प्रभु पे जो चढ़ाया ये पाप नहीं महापाप है ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी।
8: हम तो चाहते हैं कि चंदा चोरी हुई है राम राम राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो भगवान राम जी के जिस तरह से चंदे में, दान में, लोगों के संकल्प में, लोगों की श्रद्धा और निष्ठा की लूट हुई, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है।
9: करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाया है, अयोध्या को कलंकित किया है, अयोध्या को कलंकित किया है। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे, इनको प्रभु, ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे, पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा।
10: मैंने स्वयं नोटिस दी है अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी की गई, डकैती की गई, भगवान राम को लूटा गया। भाजपा ने मंदिर नहीं बनवाया कोई कानून लाकर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि एक ट्रस्ट बनाइए और मंदिर बनाइए। मंदिर के नाम पे उन्होंने लूट लिया। 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 17 करोड़ में खरीदी। खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी, पदाधिकारी जिम्मेदार पद पर आसीन। 111 करोड़ लग गया उसके उद्घाटन में, बल्ली शामियाना इसमें लोगों ने कारें खरीद ली, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। 40 दिन में 70 बार लूट पकड़ी गई।
11: जो सच है वो सच्चाई सामने आ रही है। जब राम मंदिर का विश्वस्त मंडल ये प्रधानमंत्री और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, तब नियुक्त करते समय हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता है, कर्मठता के साथ भरे हुए, इस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने कही थी। अब वो खोखली साबित होने के बाद, इतना ही नहीं तो चोरी साबित होने के बाद, उसकी जिम्मेदारी भी देश के पंतप्रधान और गृह मंत्री को लेना चाहिए।
1: Let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Now, the Delhi government has announced that no legal action will be taken against those booked over the NEET UG protests. 13 FIRs were registered by the Delhi police, but the government says that arrests and detentions will now be reviewed and the release process will be expedited. The government has also made it clear that no further action will be taken and the cases will be treated as closed, with the decision approved by the Lieutenant Governor of Delhi. However, the relief will not extend to history cheaters or those with criminal antecedents. This, remember, is in line with the Supreme Court's directions. Let's also take you through the reactions coming in on this.
12: इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर, जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा। उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए।
1: Joins us on the broadcast to shed more light on this. Ishika, an important statement coming in from the Delhi Minister Ashish Sood. It's important to understand that the government is now saying that while it will drop the cases against the protesters, there still is a caveat where they've said that those with previous history, with previous criminal records, will not be spared.
4: Well, yes, Sreet, in fact, Delhi is among one of those few states, you know, who have in fact gone on to withdraw all the cases against the protesters that were in the Jantar Mantar protest. Let me tell you that, in a statement that was issued by the Delhi's Home Department, it has been clearly said that the government will not be going for any adverse legal action against any protesters. And if there are arrests and detainment that have already been done, well, in that case it will be reviewed and the release will be done very soon. But certainly the government here has gone on to say that this they are doing only to show that they are with the students, and this commitment they are going to show via this withdrawal of the cases. But the government has also gone on to clarify that all those people who have in fact previous criminal records, their cases will not be withdrawn. Let me tell our viewers that till yesterday 6 p.m. there were 13 cases that were booked against the protesters. So certainly most of it is now going to be withdrawn. Over to you.
1: All right, Rishika, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Let me now also take you through more developments coming in. Remember that Congress member Parliament Priyanka Gandhi

0: and debate and must be presented with dignity. Objecting to the jibe, the academics wrote that they deserve to participate in debates without fear and that they welcome challenges to hypothesis, but scholarship itself should not be diminished or reduced to individuals to caricature.
1: मगर सभापति जी, मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं जिनको गोमूत्र की भी समस्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 641-0059 और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती।
2: दैट इज ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स बिल in which Professor Kamkoti has been nominated and he is being discussed in this discussion. He is a very eminent academician. When I was chairman of the National Board of Accreditation, I had interacted with him several times and I found him very logical, thorough academician, very thorough in the subject. Also, IITs have an experience of conducting equally important exam JEE for several years without any sort of question mark. So a director of an IIT is a member of the task force. We should all appreciate that his inputs will be very useful.
3: इस तरह से भी कुछ उनको एड्रेस किया गया जो काफी डेरोगेटरी है अपने टर्म्स में। मुझे लगता है कि जो उनकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है और तरह तरह से डीआरडीओ में रिसर्च के थ्रू इनोवेशन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कंट्री के जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको भी उन शब्दों में ध्यान में नहीं रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में, समाज में, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो एक महत्वपूर्ण और रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर आसीन है, इस तरह के कमेंट से बचना चाहिए।
0: Well, Professor Kamakoti is a part of the center's newly constituted education reform panel. Spoke with NDTV's Padmita Joshi on the row. Let's also listen in to what he had to say.
4: Kamakoti, director of IIT Madras and now a member of that high-powered panel on exam reforms, is joining us live. So thanks very much for speaking to us. Just tell the people.
5: थोड़े में
4: एग्जाम सिस्टम रिहॉल।
6: पद्मा जी नमस्ते।
4: नमस्ते।
6: सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैनल इज अ सिंगल एजेंडा दैट वी नीड टू कम आउट विद अ फ्रेमवर्क दैट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंट, रोबस्ट एंड लीक प्रूफ एग्जामिनेशन एंड आईआईटीज हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस एग्जामिनेशन फॉर क्वाइट सम टाइम. We have been conducting one of the largest examinations in the past and for several decades now. And we have seen the growth of the examination in terms of scale. When I wrote JEE in 1985, there were 5,000 people who wrote it. Today we have 1.5 million aspirants for that examination. And over a period of time, we have seen the transition from a paper and pen subject to subjective papers to optical sensor recognizing sheets, and then we moved to image processing, and then we have come to computer based testing. And so we have seen all the forms. We have adopted so many technologies. We have also seen, you know, usage of other type of technologies in, so if you have 1.5 million people identifying biometric, and also, you know, handheld metal detectors. How do we stop people from bringing devices inside in this age of electronic devices, etc.? Mm. So many new technologies we have adopted, and we have seen this in.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
11: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, सेहतमंद, हर रोज़।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
4: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
11: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
12: Meetha, ya namkeen, chahe jaise khao. 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा।
2: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
3: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: POK के firing range में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
0: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
6: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
7: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
6: When stories have impact,
8: Bhagwatar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
6: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
7: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
2: It's 9 a.m. It's a Friday morning, and you are watching The Breakfast Show on NDTV 24/7. I am Parmeshwar Bava. We've got an action-packed bulletin lined up for you this morning with news from across the country and around the world. Let's begin with the top headlines. Acknowledging that reform in education sector had become compulsory at a national scale,

0: मेरे हर एक कमेंट पे सेम सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं, और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, ये कर
1: ठीक है, बट आपने आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा। आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला?
0: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की।
2: Let's also get you the latest on the legal aftermath of the nationwide student protests. The Delhi government has announced that no further legal action will be taken against those booked in connection with the NEET protests. 13 FIRs were registered by the Delhi police, but the government now says that arrests and detentions will be reviewed, the release process expedited, and the cases treated as closed. The decision approved by the Lieutenant Governor comes with an important caveat though, that it will not apply to history cheaters or those with a criminal record in line with the Supreme Court's directions. Several states though, you must note, have begun reviewing cases linked to recent protests. While Bihar, Assam, West Bengal have moved to withdraw closed cases, Kerala is considering relief as we speak. Maharashtra's status meanwhile remains unclear, even as Delhi has excluded history cheaters from the relief. We've got a reaction from Ashish Sood on behalf of the Delhi government. Listen in.
3: जिसके इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा। उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए।
2: Right, so the Prime Minister has once again chosen Instagram to speak directly to the country's students. In his fourth video message in a week, Narendra Modi has welcomed Parliament's passage of the tougher anti-paper leak bill, describing it as a major milestone in cleaning up India's exam system. He says the paper leak mafia will not be spared, pointing to fast-track courts, a special task force, and tougher penalties as proof of the government's intent. But the politics around this issue is far from settled. The latest message is part of a sustained digital outreach by the Prime Minister. But while the government says it has delivered on its promise, many point out that the real test does begin now. Will this law stop the next paper leak? Or will students once again be asked to place their faith in reforms after the damage is done? Listen in to what the Prime Minister had to say.
4: Sathiyo, Vishwasta Pariksha Paddhati. इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है, और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है, और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Well, the paper leak debate may have dominated Parliament this week, but the opposition is already preparing its next line of attack. Its focus is expected to shift to the alleged theft of donations meant for the Ram Temple. Samajwadi Party MPs, joined by other opposition leaders, staged a symbolic protest in the Parliament complex, carrying a donation box yesterday, arguing that the issue goes beyond politics because it concerns the faith and contributions of millions of people. The opposition says the issue concerns the faith of millions. They are demanding a discussion in Parliament, and the timing, of course, is significant. The Supreme Court has stepped up its oversight of the investigation, directing the reconstituted special investigation team to submit a status report within the next 2 weeks, and asking the Uttar Pradesh government to induct a forensic auditor into the probe. Here are the reactions you cannot ignore.
5: Ram Dhan ki chori ho gayi, bataiye. प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, ये महापाप है। हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया इन्होंने, जो आम जनता श्रद्धावान है, प्रभु पे जो चढ़ाया, ये पाप नहीं महापाप है। ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी।
6: हम तो चाहते हैं कि चंदा चोरी हुई है राम मंदिर की, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो भगवान राम जी के जिस तरह से चंदे में, दान में, लोगों के संकल्प में, लोगों की श्रद्धा और निष्ठा की लूट हुई, हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है।
7: करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट पहुँचाया है, अयोध्या को कलंकित किया है, अयोध्या को कलंकित किया है। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे, इनको प्रभु, ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे, पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा।
8: मैंने स्वयं नोटिस दी है, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी की गई, डकैती की गई, भगवान राम को लूटा गया, भाजपा ने मंदिर नहीं बनवाया कोई कानून लाकर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि एक ट्रस्ट बनाइए और मंदिर बनाइए। मंदिर के नाम पे उन्होंने लूट लिया। 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 17 करोड़ में खरीदी। खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी, पदाधिकारी, जिम्मेदार पद पर आसीन। 111 करोड़ लग गया उसके उद्घाटन में, बल्ली, शामियाना, इसमें लोगों ने कारें खरीद ली, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। 40 दिन में 70 बार लूट पकड़ी गई।
9: जो सच है वो सच्चाई सामने आ रही है। जब राम मंदिर का विश्वस्त मंडल ये प्रधानमंत्री और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, तब नियुक्त करते समय हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता है, कर्मठता के साथ भरे हुए, इस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने कही थी। अब वो खोखली साबित होने के बाद, इतना ही नहीं तो चोरी साबित होने के बाद, उसकी जिम्मेदारी भी देश के पंतप्रधान और गृहमंत्री को लेना चाहिए।
2: ऑलराइट, कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा'स क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स एंड हर रेफरेंस टू IIT मद्रास डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी एज अ गौमूत्र एक्सपर्ट हैज ड्रॉन शार्प पॉलिटिकल रिएक्शंस एंड नाउ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एकेडमिक कम्युनिटी। More than 200 academics have written an open letter to the Congress leader, objecting to her remarks, saying that mockery cannot be a substitute for reasoned engagement. The academics expressed deep dis-

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
5: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful match.

0: मेकिंग सर्विस मोदो एलीट।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
6: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
7: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
6: When stories have impact,
8: Bhagwatar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
6: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
7: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
9: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
14: Your friend said,

0: criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
1: Soon after the Jantar Mantar protest ended on the 25th of July, though, you know, Shraddha Singh, a 23-year-old MSc student, she posted a 7-second reel on her Instagram. Within an hour, that video crossed a million views before she deleted it. But 5 days and 2 apologies later, she says she's still receiving rape and death threats. NDTV spoke to the influencer who drew flak over a reel on the RAF personnel and then apologized. Listen in to that conversation.
2: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया क्या आपको जेंजी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया आप क्या सोच रहे थे
3: एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है मुझे डिलीट कर देना चाहिए तो मैंने वो डिलीट कर दिया था बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं ये वो जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने कोई गाली नहीं दी है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे ये आरपीएफ
2: पर्सनल
3: आरएएफ वाले थे
2: एक ही ग्रुप होता है सबका
3: किया नहीं था बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे ये करते
2: ठीक है बट आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला
3: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ मैं ऐसे लोगों को उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की
1: Meanwhile, let's get you the latest on the legal aftermath of the nationwide student protests. The Delhi government in its latest order has announced that no further action will be taken legally against those booked in connection with the protests. 13 FIRs were registered by the Delhi police, but the government now says arrests and detentions will be reviewed and the cases will be treated as closed. The decision approved by the Lieutenant Governor comes with an important caveat, though. It will not apply to history cheaters or those with a criminal record in line with the Supreme Court's directions. And as you know, several states have actually begun reviewing cases linked to recent protests, while Bihar, Assam, West Bengal, they have moved to withdraw closed cases. Kerala is considering relief, we're given to understand. Maharashtra status remains unclear as we speak, even as Delhi has excluded history cheaters from the relief. We've got a reaction lined up from Ashish Sood. Listen in to what he said on behalf of the Delhi government.
4: इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं जिन्होंने हिंसा की है तोड़फोड़ की है उन पर लागू नहीं होगा उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं
1: Alright, let's turn our attention to the information we're tracking at the moment. The investigation into the July 20th student protest is now entering a new phase with the Delhi police saying it's expanding its probe using digital evidence, examining CCTV footage, and facial recognition data to identify people accused of attacking security personnel and damaging public property during the violence. According to police sources, investigators are now scrutinizing videos of individuals who had their faces covered during the protest. They claim that some participants wore masks, they wore protective goggles. They're also examining the alleged use of wet jute sacks, which police suspect may have been used to counter tear gas. These claims are part of the police investigation. They are yet to be tested in court, as you know. But to decode the latest developments for us, Akhil Jameel joins us live. Akhil, tell us, what exactly is Delhi police investigating, and are they looking only at those allegedly involved in violence or at everyone present at the protest?
5: Right, Pradeshwar, if you see what we have got to learn, that over 2,800 individuals have been identified through FRS, which is Facial Recognition System. Earlier, what we have seen that yesterday, if you see early, on 29th of July, what we have seen that an FIR has been filed, a zero FIR has been filed against a woman from Noida. She has abused at that point in time when the protest was taking place on July 23rd. At that point in time, she has abused Prime Minister Modi and then several cabinet ministers. And then what we have seen that zero FIR has been transferred to the New Delhi police jurisdiction, which comes under the police station of Parliamentary State. So there have been several actions being taken by the Delhi police in this regard. And right now, what we have got to learn, that Delhi police team has collected video evidences of those individuals who have covered their faces and were involved in violence. So right now, if you see, those footages have been tracked down by the Delhi police, in which what we have seen that Delhi police personnel were basically attacked by with the help of the sticks and batons. So right now, the investigation is carrying forward by the Delhi police in that direction. And Delhi police has also identified over 400 CCTV camera visuals. And with the help of that, Delhi police is creating a sequence of that events, that how those individuals wore masks and then attacked the police team with sticks and batons. So right now, the investigation is currently underway in that direction.
1: Akhil, we'll continue to track all the latest developments with you. Thanks so much. We'll leave it there for now. Well, as you know, the Prime Minister has once again chosen Instagram to speak directly to the country's students. In his fourth video message in a week, Prime Minister Modi has welcomed Parliament's entire step, the passage of the tougher anti-paper leak bill, describing it as a major milestone in cleaning up India's exam system. In fact, he says the paper leak mafia will not be spared, pointing to fast-track courts, a special task force and tougher penalties as proof of the government's intent. But the politics around this issue is far from settled. The latest message is part of a sustained digital outreach by the Prime Minister, the BJP is asserting. While the government says it has delivered on its promise, the real test begins now. Will this law stop the next paper leak? Or will students once again be asked to place their faith in reforms after the damage is done? Listen in to what the Prime Minister had to say.
6: Sathiyo, Vishwastha Pariksha Paddhati. Iske liye hum lagataar ek ke baad ek kadam utha rahe hain. Task force ki rachna ho, fast track ki aur rachna ho, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Well, the investigation into the July 20th student protests is now entering a different phase. The Delhi police says it's expanding its probe using digital evidence, examining CCTV footage and facial recognition data to identify people accused of attacking security personnel and damaging public property during the violence. We now have a press conference that the Delhi police is addressing. Let's listen in.
7: ये सूचना मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई थी। इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर्स द्वारा लोगों को जंतर मंतर पहुंचने तथा संसद मार्च के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरित किया है। इसको ध्यान में रखते हुए तारीख 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टाफ की ब्रीफिंग करके जगह जगह पर भारी संख्या में तैनाती और अलग अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। इसमें विभिन्न सीनियर रैंक के ऑफिसर्स एवं महिला स्टाफ की भी तैनाती की गई। 20 तारीख की सुबह होते ही संसद मार्च के लिए भारी भीड़ जुटनी शुरू हुई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के पास संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भीड़ का स्वरूप उपद्रवी होना शुरू हो गया और भीड़ जोरदार नारेबाजी के साथ साथ पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जाने लगे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई, अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ पुलिस ने बैरिकेड को फिर से खींचकर भीड़ से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई और उनकी दूरी संसद से महज 50 मीटर की रही। ये देखकर पुलिस अधिकारियों ने बार बार उग्र भीड़ को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे रहे। बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद
8: अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने

टियर गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करना। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उग्र भीड़ के द्वारा पथराव एवं घेरकर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। चोटें होने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों ने भीड़ पर काबू करने का प्रयास

0: stuff.
1: एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
2: हेलो, माय नेम इज कुंजल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीयू। माय फादर इज असाइन दिल्ली पुलिस। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले इंडियन, मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरिन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिगेट्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM। He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें, हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी, हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा।
1: सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार।

0: नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस पे एएसआई हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक एएसआई के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था, वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ ये ही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरे उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को रात को जब वो 11:30 ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज़ के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाए जाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाए।
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सी मच। हाँ लक्ष्य आप बताएंगे सर।
2: हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड वेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
1: कुंजल आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे?
3: मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडर जिन्होंने पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू।
1: लक्ष्य आप कंटिन्यू करना चाहेंगे?
2: मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसिव थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माई फादर डिडंट डिजर्व दिस। थैंक यू।
4: और बोलना था।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी.
1: घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
2: भैया बीजेपी के हो गया?
1: बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी के बोल रहे. घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
2: भैया बीजेपी के हो गया?
1: बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी के बोल
3: रहे. बाइनरीज क्रिएट करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है. ये जो है लड़वाने का काम करती है. अब वो पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स करने की कोशिश कर रही है. पहले आर्मी वर्सेस किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर देती थी, कभी फार्मर्स वर्सेस कभी किसी को कर देती थी. ये जो है ना करने की इनकी आदत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये है, बात यह है जंतर मंतर में जो आवाज उठ रही थी, उनकी जो भावनाएं थे, उनकी जो लड़ाई, जो हकूक की जायज हकूक के लिए उनकी जो लड़ाई थी और जो इश्यूज मुद्दे जो उठा रहे थे, वो सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं था. वो सारे ही पेपर लीक का मुद्दा था. एजुकेशन सिस्टम का था, वो एग्जामिनेशन सिस्टम का था, उनके भविष्य का, एम्प्लॉयमेंट का था.
4: A video of a woman protests at Jantar Mantar using derogatory language against the Prime Minister that led to outrage has now been booked, while another woman seen abusing security personnel during the protests has issued an apology. An FIR has been registered against Ruchika Singh over alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. The case has now been transferred to Delhi Sansad Marg Police Station for further investigation. CJP spokesperson Saurav Das has condemned the police action, calling the FIRs and criminal proceedings against protesters illegal. Meanwhile, Delhi police has intensified its probe after identifying over 2,800 alleged miscreants through facial recognition. Investigators are now tracking mask rioters by analyzing nearly 400 CCTV feeds and gathering digital evidence.
5: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I am not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
4: A zero FIR has been filed against this woman, Ruchika Singh, based out of Noida, actually from Faridabad, for her defamatory language, which was just...
6: For a kid who is in her early 20s, the entire right-wing ecosystem has gotten after her. Her private details of her address, her phone number, her IDs, everything is being made public. Is this fair on the kid? Perhaps she shouldn't have used those cuss words. I agree with you. I mean, we need to have decency. But these are kids. So these kids need to be dealt with the way you deal with kids at your home.
4: NDTV spoke with Shraddha Singh, the controversial influencer who drew flak over a reel on RAF personnel and then apologized. Listen into this conversation.
7: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए. आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेंजी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया? आप क्या सोच रहे थे?
8: एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था. मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था. मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था. बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पे लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे, ये आरपीएफ
7: पर्सनल
8: आरएएफ वाले थे.
7: एक ही ग्रुप होता है सबका.
8: किया नहीं था बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि सेम सेम लैंग्वेज में वो

0: कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को, उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की।
1: All right, moving from one controversy to the other now, this time down south, the BJP has launched a protest at the KRS dam in Mandya against the DKS government over the release of Kaveri water to the state of Tamil Nadu. Senior BJP leader B.S. Yeddurappa and state BJP chief B.Y. Vijayendra are leading BJP's charge. Farmers have also joined the protest in large numbers. The BJP is demanding that the Karnataka government immediately move the Supreme Court against the CWRC's direction to release 3,500 cusecs of water to the state of Tamil Nadu. The party has also dismissed the state government's outreach to the Tamil Nadu chief minister as mere political optics, accusing the Congress government of failing to protect Karnataka's interests.
2: Well, we are right now in Mandya, right in front of the KRS dam, where you see the BJP has called for a massive protest. Joining me right now is Chaluwadi Narayan Swamy, sir. Sir, thank you so much for speaking to NDTV. Sir, you've called for a massive protest. Firstly, help us understand what is your main agenda today? What is your demand as well?
3: Our agenda is tribunal has given a order to release 3.5 TMC of water to Tamil Nadu. But there is a scarcity of water in Karnataka. KRS is totally dry. Only for 1 or 2 months, so for the drinking purpose, we can use this water. 4 TMC of water will be a dead storage, so that there is no water available. In this emergency time, tribunal should have rethink this issue. Before that, government has to convince them through the report what drought position, what is the water position and all. But they have not done.
1: We're now cutting live to a press conference being held by the Delhi police.
4: आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका declare कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया, तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती गोली चलानी ही पड़ती, और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर ऑफिसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। इससे बड़ी अराजकता क्या होती कि अगर लोग पार्लियामेंट में घुस जाते। हमारे पूरे इंटरनेशनली हमको एक फीलिंग, शेम की फीलिंग आती कि साहब क्या हमारे भारतवर्ष की पुलिस सक्षम नहीं है। तो अगली बार जो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो भी सिस्टम होता है, जहां पर कमिश्नर सिस्टम है वहां पर मौके का अधिकारी हुक्म देता है, चाहे टियर गैस चलानी हो, चाहे वो पैलेट गन चलानी हो, चाहे वो डंडा चलाना हो, लाठीचार्ज करना हो। तो लेकिन ये जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पर डीएम और एसडीएम को बुलाते हैं, वो हुक्म देता है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको, लेकिन जहां कमिश्नर सिस्टम है, दिल्ली है, यहां पर ऑन द स्पॉट हमारी लाइफ में, और इबेद भूषण एसीबी पार्लियामेंट स्ट्रीट रहे, कम से कम हमने सैकड़ों प्रदर्शन अटेंड किए हैं, आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। हाँ, कोलेट्रल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, कोलेट्रल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, ऐसे में हुए थे, चाहे किसी भी प्रदर्शन में आप लीजिए, किसी भी प्रदर्शन में आपने अटेंड किया, वो हो सकते हैं। अगली बार हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं, और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है, जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत, हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए हैं, सभी को जो दुख हुआ है, लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहां एक्सप्रेस करें। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जितना कि एक आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए, उतना ही पुलिस अधिकारी के लिए भी।

0: हाँ, और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मॉब फ्रेंजी में जहां पर जान का खतरा बना हुआ, लिंचिंग हो रही हो, वहां पर ट्रेनिंग, एसओपी, वहां पर बाकी की सारी चीजें मौके के अफसर को नहीं याद आती, क्योंकि सबसे पहला काम उसको जान बचाना होता है। लेकिन फिर भी 128 कर्मियों के घायल होने का मतलब इट स्पीक्स इन वॉल्यूम कि रेस्टेंट पुलिस ने दिखाया है। अगर एजिटेटर्स को चोटें आई हैं, जो मेरी सहानुभूति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे इस उम्र के हैं, जनजी के उम्र के हैं, उनके भी ख्यालात हमसे डिफरेंट है और हम बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करते, लेकिन हमें किसने मारा? 128 पुलिस कर्मियों को किसने मारा? अगर हमने उनको मारा तो हमें किसने मारा? ये बात का जवाब हमें चाहिए कि इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं सरकार की जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, बहुत ही संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ने जो बहुत ही बैलेंसिंग जजमेंट दिया है, उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है। और मैं आपको आखिर में मेरी सहानुभूति है जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो इनोसेंट थे, जो स्टूडेंट हैं, उनको अगर किसी तरह से क्षति पहुंची है, जो मॉब फ्रेंजी, नोट कर लीजिए, मॉब फ्रेंजी अनलॉफुल असेंबली में एक आदमी के साथ वार्तालाप, एक आदमी के साथ वन टू वन बात नहीं कर सकती पुलिस, एक साथ ही उसको एक्शन लेना पड़ता है डिस्पर्स करने के लिए। तो इसलिए अगर उनको कोई कोलैटरल डैमेज हुआ हो, उन बच्चों के प्रति भी, हम उनके पेरेंट्स की उम्र के हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है, और आने वाली ये हमारी जो 60% की जनरेशन है, इनकी अपना आवाज उठाएं, लेकिन संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। ओवरफ्लो ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आइए आप। अगर बैरिकेड नहीं क्रॉस होता तो बगैर परमिशन के वो लोग कर ही रहे थे भाई, प्रदर्शन तो चल ही रहा था ना। और कई लोगों ने कहीं धरने दिए हैं पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने कौन से परमिशन ले लिए? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मैं, मेरे लिए कानून नहीं है, दूसरे के लिए कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कानून हमारे लिए भी है, पुलिसकर्मियों के लिए और सिविलियन के लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है, कानून सबके लिए है। कानून का इकबाल देश में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: ये जो ऑफिसर बैठे हुए ब्रजलाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, डीजी रहे उत्तर प्रदेश के, ये जो फील्ड में काम करना होता है, ग्राउंड में, और एक ऑफिस में बैठकर एयर कंडीशन में या बड़े बड़े ऑफिस में जाकर काम करना, ब्यूरोक्रेट्स होना, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर अलग है। ये जो मेरे अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए, ये वो ऑफिसर है जिन्होंने जमीन पर काम किया है। एक ऑफिसर सीनियर पोजीशन में होना, ब्यूरोक्रेट होना अलग बात है, परंतु जो ग्राउंड में परेशानियां पुलिस को झेलनी पड़ती है, एक सिपाही को झेलनी पड़ती है, एक आईपीएस ऑफिसर को, एक कमिश्नर को झेलनी पड़ती है, उसी को पता होता है कि कितना ही चैलेंजिंग जॉब है। तो आप ये जो ग्राउंड के ऑफिसर थे, मैं इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं कि वो ये बातें बताएंगे जो ग्राउंड पर हमारी परेशानियां होती है, जो हम लोगों ने झेली हुई है, मार खाई हुई है, तमाम चीजें पुलिस के सामने होती है, कोर्ट कचहरी अदालत, बहुत सारे कानून और तमाम की निगाह पुलिस के ऊपर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जमीन से जुड़े हुए पठानिया साहब है, राजेंद्र पठानिया, बहुत लंबे समय तक दिल्ली पुलिस की सेवाएं की है, 40 साल तक सेवाएं की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पठानिया साहब, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि संक्षेप में 5-5 मिनट रखें, और बिजलाल साहब को भी पार्लियामेंट जाना है। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। अभी तो आप जवान हो, नहीं रिटायर तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इससे भी वाले हम जेंजी वाले और यंग जेंजी
2: सारे माइक में
1: करवा दो सर।
3: All right, so that is a press conference that was held by the Delhi Police Mahasangh, where retired police officer expressed solidarity for representatives from the Mahasangh for those injured in the protests. I'm talking, of course, of the Delhi police personnel injured in the protests. Let's dip in again.
2: और सारी उम्र मेरी दिल्ली पुलिस में ही नौकरी करते निकल गई। करीबन छह जगह मैं एसटीओ रहा था और तीन एसीपी सब डिवीजन का भी मुझे मौका मिला। मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, सब आपके सामने है। आपके मंच के इस माध्यम से मैं पूरे अपने जवानों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई या मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माता का गौरव बढ़े, मान बढ़े। पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या छिछलेदार होती अगर किसी तरह से प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, पूरा वर्ल्ड देखता हमें और हमारी डेमोक्रेसी पे हंसते सारे लोग। और मैं आपके माध्यम से जो हमारी यंग जनरेशन है इनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम देखें तो सही आपकी बच्चे जा कहां रहे हैं, कहीं वो पथ से भटक तो नहीं गए, और उनको समझाएं बुझाएं। हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जनरेशन ठीक किया, वो सवाल पूछना सरकार से जायज है, लेकिन इस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां बच्चियां दे रही हैं। हमारे बच्चों से भी कम उम्र की बच्चियां वहां पूरी फोर्स खड़ी है, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, किस तरह से उन्होंने मीडिया का मिसयूज किया, और इस तरह की हरकतों से बचे, यही मुझे आप लोगों के माध्यम से कहना था। नमस्कार, जय हिंद।
3: A quick recap of what these retired police officers are saying. They are saying that police personnel who were injured have as much a right as those protesters who were injured for justice. They're demanding justice for those who were injured and pelted stones at in terms of the police representatives. They're saying 128 cops were injured, and that only goes to show the restraint they tried to display when the protests were on. Also, these representatives talk about how if restraint wasn't used on part of the police representatives on the ground, then entering parliament would have been what everyone would witness in terms of these protesters storming parliament, which is stopped, obstructed by police personnel. This morning, you had the family of police personnel who were injured speaking to the media. Let's dip in once again into this press conference.
4: Sir, namaskar. Sir, namaskar. आप सबको भी मेरा नमस्कार। बिना आवाज, बिना माइक के भी आ रही होगी।
5: आ रही सर, आ रही
4: है। कोई जिसको सुनाई नहीं दे रहा।
5: आ रही सर, आ रही है।
4: तो बहुत कुछ जो कुछ बताने वाला था वो इन्होंने बता दिया। मैंने भी ये चीजें झेली हैं, खुद झेली हैं। मैं 2000 में एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट था, तो वहाँ पे वकील आए थे, पूरे इंडिया से आए थे, सिर्फ यही नॉर्दर्न स्टेट्स के नहीं थे। तो उस वक्त भी लाठीचार्ज हुआ था और यही कमीशन बैठा था, जीटी लानावती कमीशन। मगर ये जो अब का प्रोटेस्ट है ये उसको भी सरपास कर आगे निकल गया उससे। आप देखो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बैठे हुए, पीएम बैठे हुए, उन तक को डरा दी, उनसे बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या बोलते, कब बोलते, किसको बोलते।
6: पॉलिटिकल
4: इतना नहीं, अभी जहां तक रहा फोर्स के साथ है। अभी डीजी सीआरपीएफ साहब ने भी कहा कि हम फोर्स के साथ हैं। जिन हालात में फोर्स ने प्रोटेस्टर का मुकाबला किया इसके अलावा कोई चारा नहीं था, अभी भी कह रहे हैं हम कि कोई चारा नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं हम उससे पूरे सहमत हैं, 100% सहमत है, एक्सेप्ट के बदमाश के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। वो अगर ये बदमाश नहीं होते तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। ये सिचुएशन बिगाड़ने वाले 3000 बदमाश थे, 2873, सबको जो है नंबर याद हो गया, बच्चे को भी पता है आज कि कितने नंबर थे। बिना बदमाश के स्टूडेंट्स का हौसला नहीं पड़ सकता कि पुलिस से चित्रा, और जो एक बार जेल में हुआ है वो पुलिस से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: BOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज BOK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
6: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
5: When stories have impact,
7: Bhagwatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
5: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
6: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding.

0: की आदत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है, बात यह है, जंतर मंतर में जो आवाज उठ रही थी, उनके जो भावनाएं थे, उनकी उनके जो लड़ाई, जो हकूक की जायज हकूक के लिए उनकी जो लड़ाई थी, और जो इश्यूज मुद्दे जो उठा रहे थे, वो सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं था, वो सारे ही पेपर लीक का मुद्दा था, एजुकेशन सिस्टम का था, वो एग्जामिनेशन सिस्टम का था, उनके भविष्य का, एम्प्लॉयमेंट का था।
1: सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है।
2: The Hyderabad police have launched a major crackdown over social media posts targeting the Prime Minister. Cybercrime police have registered FIRs against operators of several Facebook, Instagram accounts, alleging they shared morphed and objectionable content during the CJP-led protests. In a significant move, the cases also mention and name Meta India's head as part of the investigation. As the legal action gathers pace, the political war has also escalated.
3: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal...
2: Also, video of a woman protester Jantar Mantar using derogatory language against the Prime Minister that led to outrage has now been booked, while another woman seen abusing security personnel has issued an apology. An FIR has been registered against Ruchika Singh over alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister Narendra Modi. The case has now been transferred to Delhi Sansad Marg Police Station for further investigation. CJP spokesperson Saurav Das has condemned the police action, calling the FIRs and criminal proceedings against the protesters illegal. The Delhi police has intensified its probe after identifying over 2,800 alleged miscreants through facial recognition. Investigators are now tracking masked rioters by analyzing nearly 400 CCTV feeds and gathering digital evidence.
3: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
4: Zero FIR has been filed against this woman, Ruchika Singh, based out of Noida, actually from Faridabad, for her defamatory language, which was just...
5: For a kid who is in her early 20s, the entire right-wing ecosystem has gotten after her. Her private details of her address, her phone number, her IDs, everything is being made public. Is this fair on the kid? Perhaps she shouldn't have used those cuss words. I agree with you. I mean, we need to have decency. But these are kids. So these kids need to be dealt with the way you deal with kids at your home.
2: NDTV has spoken to the controversial influencer who drew flak over a reel on RAF personnel and then apologized. Listen in to what Shraddha Singh said.
6: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए, आप क्या सोच रहे थे जब आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेन ज़ी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया? आप क्या सोच रहे थे?
7: एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था। मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया। और उसके बाद जब मैं घर आई, उसको अपलोड की, तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। बट लोगों ने, मीम पेज वालों ने

सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पे लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी।

0: ठीक है, बट आपने आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा. आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला?
1: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की.
2: A rescue operation is underway in the state of Maharashtra in the Bhiwandi area after a four-story building partially collapsed during repair work. 9 bodies have been recovered from the debris, while officials say several people are still feared trapped inside. The building has reportedly tilted late last night. That's what happened last night, prompting several workers to flee, but a few remained inside. Civic authorities say the structure had already been declared unsafe, evacuated, and served multiple notices, yet repair work was allegedly carried out despite the warnings. The NDRF, the SDRF, firefighters and police are continuing an intensive search, even as the mayor warns that several other buildings in the area remain at risk.
3: कल रात को यहाँ पे ए विंग और बी विंग दो बिल्डिंग है, कोहिनूर कंपाउंड नारपोली, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रिनोवेशन का काम चल रहा था. तो ये सीवन बिल्डिंग महापालिका ने डिक्लेयर कर दी थी. तो सीवन बिल्डिंग इज नॉट फिट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इट हैज टू बी इवैक्यूएटेड, और पूरा बिल्डिंग खाली करना जरूरी होता है. वो नोटिस महापालिका ने दिया था, किंतु कॉन्ट्रैक्टर जब रिपेयर कर रहा था तो अंदर लोग थे जो कि अपेक्षित नहीं था.
4: जिसका घर उजड़ गया उसकी बोलेंगे, किसकी बोलेंगे? वो तो अपना घर उजड़ गया तो वो अपना बनाने का सोच रहा था, उसमें ये दुर्घटना हो चुकी है तो अपनी गलती क्या करेंगे भाई? जो बनाने वाला उसने सोचना चाहिए ये चीज़, समझे ना? आज लोगों की जान चली जाए गई ना भाई, कॉरपोरेशन ने पूरा खाली कर दिया, उसके बावजूद तुम उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी.
5: लापरवाही किसमें माने? तो अभी बिल्डिंग वाले जबरदस्ती कर रहे हैं तो बिल्डिंग वालों की मानेंगे जो करने वाला होगा, क्योंकि इतना बोलने के बाद, सब होने के बाद भी आप समझते नहीं, कुछ परमिशन नहीं लेते और अंदर के अंदर आप बांधकाम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नहीं, तो ये आपकी लापरवाही है. आप कुछ इंजीनियर नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मालूम नहीं, और आप खुद ही कर रहे तो खुद ही तोड़ रहे, खुद ही निकाल रहे, तो ये अच्छा नहीं है, इनकी लापरवाही. और रात में कॉरपोरेशन क्या इतने नहीं जाते, तो चोरी चुपके से करने वाला काम था ये.
2: The BJP has launched a protest at the KRS dam in Mandya against the DKS government over the release of Kaveri water to the state of Tamil Nadu. Senior BJP leader Yedurappa and state BJP chief Vijendra led BJP's charge. Now, farmers have also joined the protest in large numbers. The BJP has demanded that the Karnataka government immediately move the Supreme Court against the CWRC's direction to release 3,500 cusecs of water to Tamil Nadu. The party has also dismissed the state government's outreach to the Tamil Nadu Chief Minister as mere political optics, accusing the Congress government of failing to protect Karnataka's interests.
6: Karnataka BJP has called for a massive protest here in Mandya's KRS dam. R. Ashok, the BJP LOP, and many other district level leaders as well, along with that of our farmers, are all with the placards in their hand, raising slogans against the Karnataka Congress-led government, stating that this is a government that's anti-people, anti-farmer government, which does not really bother about the people, because you see, on the Kaveri is where that largely the people are dependent, related to the water drinking facility, even for the irrigation as well. The water at this particular dam that we are really matters a lot, not just to Mandya, Mysuru, also for the Bengalurians as well. Apparently, you see, this is the dam which has the water level capacity, in fact, of almost 124 feet dam is that it is built, but currently what it really stands at 91.9 feet. Across Karnataka there has been a rainfall deficit as well, not just this particular dam that we are talking about, viewers, but apparently various reservoirs, the dams currently are seeing a very in a shortfall in terms of rain as well. And following that, you have the BJP workers, the BJP leaders all here staging protest as well and demanding the state government to immediately not release any water to the neighboring state Tamil Nadu. As you know, water Kaveri water sharing has always been an issue between that of Karnataka and Tamil Nadu as well.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
6: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
5: When stories have impact,
7: Padmatar Joshi, managing editor and primetime anchor.
5: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
6: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
2: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
8: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
9: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
10: कुछ तो बात है इस तेल में।
11: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
12: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. Fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
12: Welcome to Left, Right, and Center.
5: Hard facts.
12: War-struck country.
5: Hard questions.
12: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
13: In the Kargil area.
12: North Ukraine.
13: In France. In Italy.
12: At Srinagar.
13: Ionistic.
12: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
14: Launch control 0 to 100.
15: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
16: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
15: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide.

0: in Kolkata, saying that how she would want to keep returning to the city and not make this one of a kind visit. And of course, all eyes on the literary event tomorrow, where she will be expressing her views and opinion. And of course, this morning when she arrived at the Kolkata airport, several fans had reached the airport to get a glimpse of the exiled author, along with posters and flower bouquets to give her. And of course, the security of the author has also been tightened by the Kolkata police to ensure that there is no untoward law and order situation.
1: All right, Tracy Day getting us the latest on the historic visit of Tasleema Nasreen, well-known, globally recognized author, but controversial writer as well, who has returned to Kolkata after 19 long years. We'll be keeping a very close watch on that story and getting you that interview that she gave me earlier this year. But thank you, Shreyasi, for getting us the latest. Meanwhile, Hyderabad police have launched a major crackdown over social media posts targeting Prime Minister Narendra Modi. Cybercrime police have registered FIRs against operators of several Facebook and Instagram accounts, alleging they shared morphed and objectionable content during the CJP-led NEET paper leak agitation. In a significant move, the cases also named Meta India's head as part of the investigation. As the legal action gathers pace, the political war has only escalated further. Let's get to the reactions we are picking up. All right, back to the top story, and this is in regard to what's been happening over the last few days in national capital, the NEET protests and the response from the government. Now, the families of the injured police officers during Jantar Mantar protest are now demanding justice. Families of the injured personnel said the officers were simply carrying out their duty when they came under attack. One family member claimed that his father was almost lynched by the mob. According to Delhi police, nearly 200 police personnel were injured after protesters allegedly turned violent, attacked security personnel, pelted stones as well. Several officers sustained injuries while trying to disperse the crowd and restore order near India's parliament. Meanwhile, Delhi police has intensified its probe with 2,000 history sheeters and known criminals under the scanner. Meanwhile, the leader of the opposition, Rahul Gandhi, has tapped at a reporter when he asked about the attack on the police officers by the protesters and the demand for justice by the family members of the Delhi police personnel.
2: He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था. मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये protest student protest नहीं लग रहा है. इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं. उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 पीएम. ही वाज अनकॉन्शियस एट द आरएमएल हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी. 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था. मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं. शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे. उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है.
3: वाले घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
4: भैया बीजेपी के हो गया?
3: नहीं, बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे हैं. वाले घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
4: भैया बीजेपी के हो गया?
3: नहीं, बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे हैं.
5: ये बाइनरीज क्रिएट करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है. ये जो है लड़वाने का काम करती है. अब वो पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स करने की कोशिश कर रही है. पहले आर्मी वर्सेस किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर देती थी, कभी फार्मर्स वर्सेस कभी किसी को कर देती थी। ये जो अलम करने की इनकी आदत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है, बात यह है, जंतर मंतर में जो आवाज़ उठ रही थी, उनकी जो भावनाएं थे, उनकी उनकी जो लड़ाई, जो हकूक की जायज़ हकूक के लिए उनकी जो लड़ाई थी, और जो इश्यूज मुद्दे जो उठा रहे थे, वो सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं था, वो सारे ही पेपर लीक का मुद्दा था, एजुकेशन सिस्टम का था, वो एग्जामिनेशन सिस्टम का था, उनके भविष्य का, एम्प्लॉयमेंट का था।
6: Joining us right now is Congress MP Imran Masood. Mr. Masood, today we saw back-to-back press conferences being done by injured police officials' families, and then your Mahasangh, police Mahasangh as well, talking about how severe injuries were suffered by police officials. How do you see that?
7: नहीं, जिस तरह से पुलिस ने लाठी चलाई, जिस तरह से पुलिस ने पैलेट गन चलाई, उसके बाद ये इसका कोई मायने नहीं होता है। ये सरकार क्या कराना चाह रही है? क्या छात्रों को फांसी चढ़ा देंगे आप? क्या स्टूडेंट्स को जिस तरह से आपने पीटा है, जिस बुरी तरीके से, बर्बरता के साथ आपने ब्रूटल तरीके से मारा है, उसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। और ये पुलिस का ये जो काम पुलिस कर रही है, ये पुलिस मैनुअल के लिए भी ठीक नहीं है। ये क्या क्या तमाशा करेंगे? कल ये सब तमाशा होगा क्या देश में?
1: The Delhi government has announced, meanwhile, that no legal action will be taken against those booked over the NEET UG protests. 13 FIRs were registered by the Delhi police, but the government says arrests and detentions will now be reviewed and the release process will be expedited. The government has also made it clear that no further action will be taken and the cases will be treated as closed, with the decision approved by the Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu. However, the relief will not extend to history cheaters or those with the criminal antecedents, in line with the Supreme Court's directions. Now, several states have begun reviewing cases linked to the recent protests in New Delhi, while Bihar, Assam, Delhi and West Bengal have moved to withdraw or close cases. Kerala is considering the relief. Maharashtra's status remains unclear, even as Delhi has excluded history cheaters from the relief.
8: जिसके इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर, जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा। उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए।
9: लड़कों की तरह, बच्चों की तरह इंस्टाग्राम और इसके ऊपर मेरे से आज तक चलाना नहीं आता, उनसे तो बहुत छोटा हूं मैं, अपनी उम्र का ख्याल करें। और पेपर लीक पे जो बता रहे हैं, वो 12 साल में आपने तबाह कर दिया। पहले से आरएसएस को हटाइए उन संस्थानों से जो विचारधारा जबरदस्ती थोप रही है, उसको हटाइए, उसके बाद बात करिए।
1: All right, now breaking news coming in from Dehradun in Uttarakhand. The CBCID will now investigate the case regarding the suspicious death of Srishti Kandari, a newlywed teacher. According to the MLA, considering the sensitivity of the case, the Chief Minister has issued and written instructions to the Home Secretary to hand over the investigation to the CBCID of the state. A video recorded by the newlywed woman, Srishti, prior to her suspicious death has gone viral all across the country. In the video, she expressed her anguish before taking her own life, unfortunately. A case has been registered against three individuals, including her husband, and the police have initiated an investigation. In the Doiwala area of Dehradun, mother of Srishti, newlywed woman who died under suspicious circumstances 8 months into her marriage, has accused her in-laws of murder. In fact, Kishore is joining us on this big story following the formal complaint. The Doiwala police had investigated this case. Kishore, what's the latest that you're picking up?
10: देखिए, लेटेस्ट अभी यही है कि जिस कोतवाली में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उनके माँ बाप को बुलाया गया था, जो उनके पेरेंट्स हैं सृष्टि के, उनसे पूछताछ हुई है। इसके अलावा इसमें सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और चूंकि इस पूरे मामले में जो केस चल रहा है उस पर जाँच के है, अब चूंकि यहाँ पे अभी जो पुलिस अधिकारी जो इसमें पूरे जांच कर रहे हैं वो अंदर अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक सृष्टि नाम की एक युवती है जिसके 8 महीने शादी को हुए होते हैं और एक वीडियो डालती है और ये कहती है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके जो पेरेंट्स है या उसके जो परिवार वालों से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने ये कहा कि सृष्टि को काफ़ी टाइम से यानी 6 महीने से उसको परेशान किया जा रहा था, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। मेंटली टॉर्चर के दौरान वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, एमएससी फिजिक्स में थी और सरकारी टीचर थी, तो इस दौरान वो लड़की कैसे आत्महत्या कर सकती है जबकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, पूरे परिवार को चलाती थी अपने, ना सिर्फ मायके बल्कि ससुराल वालों में भी वो पूरे परिवार का खर्चा उठाना, परिवार की देखभाल करना। लेकिन ऐसे में अगर एक लड़की सुसाइड करती है तो इसके पीछे जो लड़की के परिवार वाले हैं उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। इस पूरे मामले की अब जांच CBCID को दी गई है और CBCID अब इस मामले में पूरी जांच करेगी कि कैसे इस पूरे मामले की जो परतें हैं वो खुलती है। लेकिन सवाल यही है कि एक लड़की अगर 6 महीने से परेशान थी, वो लगातार अपनी माँ से बात कर रही थी, उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि वो अब जब एक वीडियो डालती है और 29 जुलाई को वो आत्महत्या कर लेती है, इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप ये भी है कि हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में जांच बैठी है और जांच ही बता पाएगी कि आगे तो इसमें आगे क्या होता है, कौन दोषी है। लेकिन परिवार वालों का, जो लड़की के परिवार वाले यानी सृष्टि कंडारी के जो परिवार वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये हमारी बेटी की हत्या की गई है और इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जी,
1: इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दर्शकों को ये दिखाना ज़रूरी है कि सृष्टि ने उस आखिरी वीडियो में क्या कहा था। व्यूअर्स, दिस इज दैट लास्ट वीडियो एंड टेस्टिमनी दैट सृष्टि पुट आउट बिफोर टेकिंग हर ओन लाइफ।
11: सारे मम्मी, सारी घटना, सारी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूं, मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूं, अब और सह ही नहीं जाता। इन लोगों के सोच कभी चेंज नहीं हो सकती। सब सुनाते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ,
1: Manus. Well, that's the heart-wrenching video of Srishti from Uttarakhand that has come out. This is just moments before she took her own life. And Kishore, NDTV's correspondent, is joining us live on the latest. Kishore, आप हमारी जानकारी दे रहे थे कि घटनाक्रम क्या हुआ और अब संज्ञान जो है मुख्यमंत्री ने भी लिया है, लेकिन सवाल ये बनता है कि जो इनके इन-लॉज हैं, सास ससुर हैं या पति हैं, वो अभी कहां पर हैं और क्या पुलिस एबेटमेंट टू सुसाइड की भी धारा लगाएगी उनके खिलाफ?
10: देखिए, इस पूरे मामले में जो वीडियो आया और वीडियो के बाद जो सारी जानकारी आई, उसमें 3 लोगों पर मुकदमा हुआ, यानी कि सृष्टि के पति, उनकी सास पे और ननद पर, क्योंकि उनके जो ससुर थे उनके कैंसर से कुछ दिनों पहले डेथ हो गई थी। जो उनका बेटा है, जो उनका सृष्टि का पति है, वो अभी 13वीं में है, तो अभी पुलिस उनसे जाँच करेगी। जो इस पूरे मामले में घटना क्या थी, हमारे साथ क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, इस पूरी घटना में क्या हुआ और अब आगे फर्दर क्या होने वाला?
12: देखिए, ये एक सूचना आई थी डोईवाला कोतवाली से, जिसमें एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। इसमें तत्काल हमारे थाना प्रभारी और थाने की टीम वहाँ मौके पर पहुँची और FSL की टीम के द्वारा भी नियमानुसार इसमें सारी कार्रवाई की गई। महिला का, मृतका महिला का पंचायतनामा भरा गया और उसमें पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। इसके बाद मृतका की माता जी की तरफ से इसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है और उसमें इनके जो ससुराल वाले हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, ननद हैं और सास हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के इसमें आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो प्रताड़ना और शोषित उसको किया जाता था। इस पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है।
10: मैम, एक चीज़ है, वीडियो जो था वो कैसे मिल पाया और कैसे मिला और उनकी माँ को मिला, जो लड़की की माँ थी उनको मिला कैसा?
12: देखिए, ये अभी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन ये सभी अभी जो भी वादी पक्ष है उसकी तरफ से ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी और जैसे जैसे जो भी उनकी तरफ से साक्ष्य दिए जाएंगे उसी में ये सब स्पष्ट हो पाएगा।
10: एक आखिरी सवाल, कोई गिरफ्तारी?
12: अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
10: बिल्कुल, इसमें जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा, लेकिन इसमें एक खास बात आ रही है अंधविश्वास की, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी पंडित ने शादी से पहले

0: आता कि ये लड़की अगर जिस घर में जाएगी जो उसमें ससुर होगा यानी जो फादर इन लॉ होगा वो या तो नहीं होना चाहिए या उस वो बीमार हो जाएगा। तो ये सारी बातें अभी सारी चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन जो लड़की के परिवार जो ससुराल वाले हैं जो लड़की की शादी हुई थी सृष्टि की वो भी सरकारी नौकरी में, उनकी जो सास है वो भी सरकारी नौकरी में थी, रिटायर्ड टीचर थी, उनके ससुर भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो ऐसे में पढ़ा लिखा परिवार अगर इस तरीके की दकियानूसी बातें आज के समय में करेगा तो शायद ये अपने आप में सोचने की बात है कि इस तरीके से क्या हत्या के पीछे या लड़की को परेशान करने के पीछे कारण रहे हों या इसके अलावा कोई और कारण हो। लेकिन सृष्टि का जो वीडियो है उसमें यही बताया जा रहा है उनको मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था, उनके जो परिवार वाले हैं लड़की के वो ये बोल रहे हैं कि उनको अपशगुन यानी अनलकी कहा जा रहा था। तो ये सारे जो चीजें हैं अब इसमें जांच होगी और जांच के बाद ही पता लग पाएगा।
1: जी किशोर, आप नजर बनाए रखें, ये बहुत ही अहम स्टोरी है, हमें जब तक ये न्याय मिले परिवार को तब तक ये स्टोरी करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रताड़ना तो सामने नजर आ रही है। वील कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन दैट बिग स्टोरी। नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ वी मूव टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर अ टाइनी स्पैनिश सिटी इज विटनेसिंग अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द मेकिंग। The Ceuta city has sounded social emergency following a massive surge in migrants arrival from the Morocco. More than 2,000 migrants have made the journey in roads that has led to the death of at least 18 people. Now as the situation escalates, Spain has deployed its military in the region and Prime Minister Pedro Sanchez is expected to visit the region today. Here's an NDTV World Report.
2: Spain's North African enclave of Ceuta has declared a social emergency after a sudden spike in migrant arrivals. Authorities say 1,500 to 2,000 migrants crossed from Morocco in just 10 days. Overwhelming reception centers operating at nearly 24 times their capacity. The human cost is rising. Ceuta's authorities say 60 bodies have been recovered at sea in the past month. Officials re now seeking more funds, security support, and greater cooperation with Morocco to tackle the crisis. Spain's Interior Ministry has ruled out declaring a formal national emergency. It says the existing legal provisions do not apply to migration crises. However, Madrid has pledged additional resources. With Interior Minister Fernando Grande Marlaska expected to visit Ceuta to review the situation. Rescue teams, civil guard, and the Red Cross continue to patrol the coastline, pulling exhausted migrants from the sea. With shelters overflowing, many are now sleeping in the open as they wait for assistance.
3: The migration influx has jolted leaders across the world, with Italy being at the forefront. Italian Prime Minister Giorgia Meloni has called for Spain's suspension from the EU's visa-free Schengen travel zone.
2: The latest surge has revived memories of the 2021 Ceuta border crisis, when more than 8,000 migrants entered the enclave in just 2 days. Bureau report, NDTV World.
1: And viewers, that's all we have on this bulletin, but news and updates will continue all through the day. Keep watching NDTV.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा,
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
2: So many attacks.
1: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
2: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
2: War-struck country.
1: Hard questions.
2: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
4: In France, in Italy.
2: At Srinagar.
4: I am Istikrar.
2: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: POK ke firing range mein khade hain.
6: Just few inches away. Is POK.
5: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है. पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ.
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों.
9: कुछ तो बात है इस दिल में.
1: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन.
10: Watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
1: When stories have impact.
11: Padmatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
1: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
10: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
12: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा. तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई. आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें.
14: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
15: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
16: This car makes no sense, yet it makes every sense.

0: If I am the student movement, it was not digestive to them. And there are many measures by the BJP leadership to counter these students.
1: Now, the Congress has also questioned the FIR against protesters and the young woman, saying while there shouldn't be abuse against anyone, but to hound the young woman is also wrong.
2: Zero FIR has been filed against this woman, Rujika Singh, based out of Noida, actually from Faridabad, for her defamatory language, which was just...
3: For a kid who is in her early 20s, the entire right-wing ecosystem has gotten after her. Her private details of her address, her phone number, her IDs, everything is being made public. Is this fair on the kid? Perhaps she shouldn't have used those cuss words. I agree with you. I mean, we need to have decency. But these are kids. So these kids need to be dealt with the way you deal with kids at your home.
4: कल एक बच्ची के खिलाफ भी FIR करी है नोएडा पुलिस ने. मैं देख रहा था कहीं सर तो ये दबाने की कोशिश हो रही है. लेकिन एक बात समझ लें कि नहीं, जितना दबाएंगे उतना तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे. गलत फहमी दूर कर लें कि ये दब जाएंगे, ये उतनी तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे.
1: Now, NDTV also spoke to the young influencer who drew flak over this reel that you can see there on RAF personnel. She then issued an apology as well. Listen into that conversation.
5: वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए. आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेंजी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी?
6: No,
5: बनाया. आप
6: no,
5: क्या
6: no,
5: सोच
6: no.
5: रहे थे
6: एक्चुअली मैम? हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था. मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था. मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए. तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था, बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो. जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे, ये आरएएफ
5: पर्सनल
6: आरएएफ वाले थे.
5: एक ही ग्रुप होता है सबका.
6: किया नहीं था बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, ये करते.
5: ठीक है, बट आपने एक अपॉलोजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा. आपने वो अपॉलोजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपॉलोजी वीडियो क्यों डाला?
6: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था. तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की.
1: All right, let's go across to Ishika for more on this story. Ishika, now, police action against these young women and also, as we just heard from that influencer, they're being hounded as well. The Congress has questioned this and the Kokra Janta Party has also said that this such action should not be taken. It's become hugely controversial.
7: Well, yes, Gargi, now we are seeing that the politics over this has intensified because now Congress has come forward and slammed, in fact, the BJP for this, going on to attack the Prime Minister, saying that, he cannot silence the Gen Z, and going on to say Rahul Gandhi himself tweeting it out that first you break their bones and now, in fact, you are registering FIR against them. Let me tell you, this entire case is basically an FIR against a 25-year-old Ruchika. And the allegation is that on, in fact, 23rd at Jantar Mantar, she allegedly used objectionable comments on, against the Prime Minister, after which the zero FIR was filed in Noida. After that, certainly, the Delhi police is investigating the entire matter. And let me tell you that the Delhi police is also looking into different other accounts where such objectionable comments have been made against the Prime Minister or even against the security personnel. On Gandhi, and certainly the CJP has condemned this, calling it illegal, saying that, you know, one of their demands was that FIR needs to be withdrawn. But here, the FIR being registered, that certainly is something that they are condemning. So certainly the politics over this now has intensified and remains to be seen that how it will pan out in the coming days. Over to you.
1: All right, Ishika, thanks so much for joining us with those details. So now you have these ads and these complaints being filed against social media posts that were put up, videos of young women who were, abusing or using this obscene language against the Prime Minister. But on the other hand, let's get you developments from Delhi, where the Delhi government has announced that no legal action will be taken against those who were booked over the NEET UG protest. These are those people who are actually protesting on the ground there. 13 FIRs were registered by the Delhi police, but the government says arrests and detentions will now be reviewed and release process will be expedited. The government has also made it clear that no further action will be taken in the cases which will be treated as closed, with the decision approved by the Delhi Lieutenant Governor. However, the relief will not extend to history sheeters or those with criminal antecedents, in line with the Supreme Court's directions. Several states have begun reviewing cases linked to the recent protests. While Bihar, Assam, Delhi and West Bengal have moved to withdraw or close cases, Kerala is considering relief. Maharashtra's status remains unclear, even as Delhi has excluded history sheeters from the relief.
8: इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर, जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा। उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं।
4: लड़कों की तरह, बच्चों की तरह इंस्टाग्राम और इसके ऊपर मेरे से आज तक चलाना नहीं आता, उनसे तो बहुत छोटा हूं मैं, अपनी उम्र का ख्याल करें। और पेपर लीक पे जो बता रहे हैं वो 12 साल में आपने तबाह कर दिया, पहले से आरएसएस को हटाइए उन संस्थानों से जो विचारधारा जबरदस्ती थोप रही है, उसको हटाइए, उसके बाद बात करिए।
1: Now the families of injured police officers during the Jantar Mantar protests are demanding justice. Families of the injured personnel said the officers were simply carrying out their duty when they came under attack.

0: sustained injuries. Meanwhile, Rahul Gandhi, when asked by reporters regarding this press conference done by the police families, he snapped at the reporters. Listen in.
1: He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था. मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये protest, student protest नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे anti-social elements जुड़ चुके हैं. उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM. ही वाज अनकॉन्शियस एट द आरएमएल हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी.
2: 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था. मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आपबीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं. शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे. उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है.
3: सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई है. लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है. और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है.
4: घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
5: भैया बीजेपी के हो गया?
4: बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे हैं. घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
5: भैया बीजेपी के हो गया?
4: बीजेपी का जो पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोल
6: रहे हैं. ये बाइनरीज क्रिएट करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की, ये जो है लड़वाने का काम करती है. अब वो पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स करने की कोशिश कर रही है. पहले आर्मी वर्सेस किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर देती थी, कभी फार्मर्स वर्सेस कभी किसी को कर देती थी. ये जो है ना वो करने की इनकी आदत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये है, बात यह है, जंतर मंतर में जो आवाज उठ रही थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो लड़ाई, जो हकूक की जायज हकूक के लिए उनकी जो लड़ाई थी और जो इश्यूज मुद्दे जो उठा रहे थे, वो सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं था. वो सारे ही पेपर लीक का मुद्दा था, एजुकेशन सिस्टम का था, वो एग्जामिनेशन सिस्टम का था, उनके भविष्य का, एम्प्लॉयमेंट का था.
7: जॉइनिंग अस राइट नाउ इज कांग्रेस MP इमरान मसूद. मिस्टर मसूद, we saw back to back press conferences being done by injured police officials families and then your Mahasangh, police Mahasangh as well, talking about how severe injuries were suffered by police officials. How do you see that?
8: नहीं, जिस तरह से पुलिस ने लाठी चलाई, जिस तरह से पुलिस ने पैलेट गन चलाई, उसके बाद ये इसका कोई मायने नहीं होता है. ये सरकार क्या कराना चाह रही है? क्या छात्रों को फांसी चढ़ा देंगे आप? क्या स्टूडेंट्स को जिस तरह से आपने पीटा है, जिस बुरी तरीके से, बर्बरता के साथ आपने ब्रूटल तरीके से मारा है, उसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है. और ये पुलिस का ये जो काम पुलिस कर रही है, ये पुलिस मैनुअल के लिए भी ठीक नहीं है. ये क्या क्या तमाशा करेंगे? कल ये सब तमाशा होगा क्या देश में?
0: All right, and staying with news, Hyderabad police have launched a major crackdown over social media posts targeting Prime Minister Modi. So it's happening in Hyderabad as well. Cybercrime police have registered FIRs against operators of several Facebook and Instagram accounts alleging they shared morphed and objectionable content during the CJP-led NEET paper leak agitation. And in a significant

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: बी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट।

0: स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए, आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेन ज़ी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया? आप क्या सोच रहे थे?
1: एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था। मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया। और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की, तो मुझे मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था। बट लोगों ने, मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पे लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे, ये आरपीएफ
0: पर्सनल
1: आरएएफ वाले थे,
0: एक ही ग्रुप होता है सबका।
1: मैंने किया नहीं था बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया। और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, ये करते
0: ठीक है। बट आपने एक अपोलॉजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा, आपने वो अपोलॉजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपोलॉजी वीडियो क्यों डाला?
1: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को, उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की।
0: Alright, meanwhile, Hyderabad police has now launched a major crackdown over social media posts targeting Prime Minister Modi. Cybercrime police have now registered FIRs against operators of several Facebook and Instagram accounts, alleging that they shared morphed and objectionable content during the CJP-led NEET paper leak agitation. In a significant move, the cases also name Meta India's head as a part of the investigation. As legal action gathers pace, the political war has also escalated. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has once again chosen Instagram to communicate directly with the country. In his fourth video message within a week, the Prime Minister welcomed Parliament's passage of the anti-paper leak bill, calling it a major milestone in the government's efforts to secure the examination system. While listing the steps taken so far, Prime Minister Modi spoke about the creation of a special task force, the setting up of fast-track courts as well, and even broader education reforms. He also asserted that the paper leak mafia will not be spared. Well, this latest message is a part of a sustained digital outreach by the Prime Minister, with each of his recent Instagram videos focusing on exam reforms, student concerns, and the government's fast-track response to paper leaks as well.
2: Sathiyo, Vishwasta Pariksha Paddhati. Iske liye hum lagatar ek ke baad ek kadam utha rahe hain. टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन

संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज

0: साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: And that was Prime Minister Modi congratulating on the passage of the Anti-Paper League Bill in a late-night Instagram message. On that note, slipping into a very short break. Come right back, lots more light.

0: That one clip crossed well over 100 million views. Almost overnight, he wasn't just a bystander with a camera. He was the story. But virality came with a price. His account, Isaac1RL, was abruptly suspended by Meta. Within a day, it was back up. Followers intact, videos untouched. What happened next, though, needed no explanation. A camera still rolling. Abhinav standing and unveiling his brand new iPhone, thanking the Gen Z protest. No script, no sponsor tag in sight, just a kid who filmed a protest on instinct. Holding an upgrade he probably never saw coming. From street footage to a suspended account to a brand new phone in his hand, in the space of a few days. That's the story of Abhinav Bisht and Gen Z. Bureau Report, NDTV.
1: And joining me live is the content creator Abhinav Bisht himself. Abhinav, thank you so much. हमें NDTV में join करने के लिए पहले तो आप बहुत खुश दिखे. Of course, आपने iPhone 17 Pro Max लिया है. आप हमें बता सकते हैं कि आपकी life कैसे change हो गई है जंतर मंतर protest के बाद?
2: It really changed my life. Like मेरे वाले 2500 followers थे. सब लोग बोले जा रहे हैं कि मेरे 5000 followers थे. But 5000 भी मेरे लिए बहुत बड़ा number था. मेरे था मेरे 30K हो जाए, 40K, 100K, 100K max. मेरे को लगता था 100K हो गया तो मेरी life change हो जाएगी. But now I'm with 800K followers. And this really changed my life. मुझे like हमेशा से ऐसा content बनाता था जो मैं खुद देखूँ और मैं हमेशा सोचूँ कि हाँ ये अच्छा बना है, जो मैं बार बार repeat कर पाऊँ. इसलिए जो आप videos दिखा रहे थे अभी, मैं उनको देख के ऐसी smile कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसा content बनाना था मुझे जो लोग मेरे को देखे और हंसे, like उनको भी थोड़ा खुश होए. तो बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी वीडियोस बहुत अच्छी थी, तो मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा.
1: तो अभी मैं आपका इंस्टाग्राम ही देख रही थी, अब आपने एक स्टोरी डाली कि यू वांट, आपको 9 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचना है. आप कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड रोज जाते थे, क्या कॉन्टेंट बनाने के लिए जाते थे कि आप कॉज में एक्चुअली बिलीव करते थे?
2: Obviously the cause was the main reason. जो cause था उसके अलावा तो like कुछ था ही नहीं. मैं बस content बनाता था क्योंकि जैसे होता है सारे स्कूल के दोस्त मिल गए, सारे दोस्त मिल गए, वहाँ पे मजे चल रहे हैं, मस्ती चल रही है, तो उसको बस हम रिकॉर्ड करते थे, हम डाल देते थे वहाँ पे. Obviously the cause was the main reason. तो कॉज भी था प्लस एंटरटेनमेंट. वहाँ पे मैं जाता था, सारे दोस्त मिलते थे, सब मिलते थे, सब वहाँ मजे भी करते थे. वहाँ पे सब जो है अपना, वहाँ पर सारे लाइक जितने मेरे दोस्त थे वो वहीं पर बने. अराउंड मेरे 20+ फ्रेंड्स बने वहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था.
1: आप ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि आप कॉज को बिलीव करते थे, पर आपके इंस्टाग्राम वीडियो से इतने कुछ कॉज के बारे में इतना बताया नहीं है आपने. बहुत ही फनी रील्स है जो अपलोड हुए हैं एंड ऑफ कोर्स एक जो वायरल भी हो गया है. क्या आप बताना चाहते हैं कि आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद लिया है, कि पहले आपके 5000 फॉलोअर्स थे और अब आपके पास ऑलमोस्ट 9 लाख फॉलोअर्स?
2: यस, तो मेरे को लाइक मेरी मदर ने दिलाया, मेरे घर वालों ने दिलाया आईफोन, क्योंकि मेरा जो ये वाला फोन है इसमें मेरा बहुत लैग करने लग गया. मेरे इस वाले फोन में स्टोरेज नहीं है, मेरे इस वाले फोन में लाइक मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलता हूँ वो हैंग करने लग जाता है. तो मेरे को नया फोन एक्चुअली i15 लेना था, तो मैं और मेरे मम्मी 15 लेने गए थे, बट वहाँ पे मुझे फोन 17 बड़ा पसंद आ गया, तो मम्मी ने कहा अब ले तुझे जो लेना है.
1: सो ये आप क्रेडिट करते जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, और प्रोटेस्ट में रोज जाके आपने रील्स इतने बनाए, इतने वायरल हो गए वो रील्स, कि अब आप आईफोन 17 प्रो मैक्स ले पाए. बट अब क्या जो लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट थी उधर, ये भी जो रील चल रहा है पुलिस ऑफिसर को देख रहे हैं, फिर आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं, गाने चल रहे हैं पीछे, ये इसी टाइप का लैंग्वेज, बहुत सारे आपके साथी भी यही लैंग्वेज यूज कर रहे थे, उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप?
2: लाइक मैंने कोई फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करी, मैंने किसी को कुछ उल्टा नहीं बोला, मैंने किसी पार्टी को कुछ उल्टा नहीं बोला, मैंने एंटी नेशनल कुछ नहीं बोला. आप कह रहे हो कि आपने कोई प्रोटेस्ट से रिलेटेड कुछ क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरे को उस समय मेरे को ये था कि मेरे को लोगों को एंटरटेन करना है, क्योंकि वहां पर अगर मैं कुछ डालता तो फिर लोग मेरे को कहते तू इस पार्टी सपोर्ट करता है ये पार्टी, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि मैं कौन सी पार्टी.
1: आपने नीट के बारे में भी कुछ नहीं डाला जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट था?
2: हाँ जी हाँ जी, मैंने उस लाइक मेन कॉज पे मैंने डाला, शायद मैंने डाला एक दो चीजें, बट मैंने उस वे में नहीं डाली, मैंने सिर्फ एंटरटेनिंग वे में ही डाला होगा, वो भी डाला होगा, तो क्योंकि मेरे को ऐसा है कि लोग एंटरटेन होते रहे, कि अगर प्रोटेस्ट में सब बैठे रहेंगे तो वो नॉर्मल एक जस्ट वैसा हो जाएगा, सब इग्नोर करने लग जाएंगे एक टाइप के बाद. So that's the main reason.
1: Okay, my last question to Abhinav. Congratulations on the new phone, of course, and the followers. But क्या आपका bottom line, क्या आपका context यही था कि हमें reels बनाने हैं, entertainment के लिए हम जंतर मंतर protest site में जाएंगे, police officers के साथ reels बनाएंगे?
2: नहीं, मेरा पुलिस वालों को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं था. मेरे को आर्मी, मैं आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पुलिस वालों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. मैंने एक आर्मी वाले आर्मी पर्सन के साथ रील भी डाली है, रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी करके, वो भी आप देखना मेरे पेज पर है. तो मेरे को ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट करने का वो नहीं है, बट ऐसा था कि पुलिस वाले उधर बैकग्राउंड में थे, जो कि वहां पे जितने सारे लोग थे, मेरे दोस्त थे, वहां पर रील बना रहे थे. तो मैंने वहां पर एक रैंडम ये वाली रील बना ली थी, क्योंकि ये मेरी बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही थी. तो मैंने वहां पर जाके बनाई और मैंने ऊपर एक टेक्स्ट लिखा और कुछ 3 सेकंड बाद वो टेक्स्ट गायब हो गया. तो पीछे पुलिस वाले दिख रहे थे, तो लोगों ने वो कहा कि पुलिस वाले सबको डंडे मार रहे हैं और यहाँ पर ये लोग रील बना रहे हैं. तो वो उस वे में एंटरटेनिंग था.
1: आपकी रील से सिर्फ एंटरटेनमेंट ही अभी दिख रहा है. मेरा आपका आखिरी सवाल, क्या आप जंतर मंतर कॉज के लिए जा रहे थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स कॉज वो सही होने चाहिए, या आप एंटरटेनमेंट रील्स दोस्त बनाने के लिए जा रहे थे? आपने खुद ही कहा है कि आपके 20 दोस्त बने जंतर मंतर जाके.
2: यस, बट वहां पे गए स्टार्टिंग में सब कॉज के लिए थे, बट मैं भी कॉज के लिए ही गया था. तभी मेरे को स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं था कि मैं रील डालूंगा. बट मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर मेरे जितने जितने भी कंटेंट क्रिएटर दोस्त थे उनसे मेरी बातचीत हुई. वहां पर एक दो हमने रील बनाई, क्योंकि मैं पहले से कंटेंट बनाता था, तो मैं कहीं भी जाता हूँ मैं कंटेंट तो बनाता हूँ हर जगह. मैंने वहां पर एक दो रीले बनाई, वो मैंने पेज पे डाली अपने. वो पहले दिन कुछ 3-4 रीले वो ज्यादा वायरल हो गई थी. फिर उसके बाद मैंने वो डाली. फिर उसके अगले दिन भी जब मैं आया तो वहां पे सब लोग मुझसे बोलने लगे, भाई वाली रील तेरी अच्छी थी, वाली बनाते हैं. फिर मैंने वाली रील बनाई, फिर वो दोबारा चलने लगी. तो ऐसे डेली हम जाने लगे. डेली हम पहले थोड़ी देर रुकते थे, फिर सारे जो भी है लोग वहां पे आते थे, हम वहां पे कुछ कुछ अपनी रील बनाते थे. क्योंकि वहां पे सारे जितने भी मेरे दोस्त थे वो ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएटर थे, तो वहां पे उनको भी कंटेंट बनाना था, मुझे भी कंटेंट बनाना था. अब चाहे हम वो प्रोटेस्ट भी जाके बनाते या कहीं और, तो हम प्रोटेस्ट भी जा ही रहे थे और प्लस कंटेंट भी बना रहे थे.
1: ऑलराइट, थैंक यू सो मच अभिनव हमसे बात करने के लिए.
2: थैंक यू सो मच.
1: We have some breaking news coming in. The government has now summoned Meta team over content concerns. Instagram tech officials have now asked to attend Meta's global team, including policy chief Joel Kaplan. He has also been asked to meet the ministry next week. Ministry has now conveyed its concerns about the posts that impact public order. They do not even meet community standards of the platforms and CSAM content. That will, of course, directly result in a loss of safe harbor to the social media intermediary. The dates for the meeting are being worked out. And if they operate in India, which is their largest market, they will have to follow the Indian law, which is an official familiar with the matter, has now said. Ministry to question Meta's global team right now. This, of course, comes after a lot of things going around on social media, derogatory words against Prime Minister Modi, and also the fact that after Meta, by mistakenly took the Prime Minister Modi's Instagram message. Meanwhile, my colleague Rishabh Bhandwaj now joining me. Deeksha Bhardwaj, pardon me, is now joining me. Deeksha, tell us more about the government now summoning Meta's global team. Of course, this is government swift action taken against all the social media posts which are derogatory, which are below the belt against the Prime Minister and other leaders. And Meta India's head has also been summoned.
3: See, the ministry has been very categorical in its imperative, Rahisha. It says that the Meta global team, especially executives, technical executives from Instagram, senior executives, have to come meet ministry officials and explain how the algorithms are working, how content, which is

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।

0: for this daring rescue mission in Haridwar. The heroes are with us here on NDTV. It's an absolute privilege for us to bring them to you. Nitesh hamare saath jud rahe hain aur hamare saath Arpan Yadubanshi ji jud rahe hain. He is the SDRF commandant. Commandant saab hain ye is detachment ke. Bahut bahut shukriya aap dono ka hamare saath judne ke liye. Nitesh, जो आपका वीडियो है, लोगों को उसको देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मतलब जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने जबरदस्त बहाव में कोई कुछ कर भी सकता है, आप कूदे और आपने उस व्यक्ति की जान बचाई. क्या हुआ था उस दिन, आप जरा थोड़ा हमें बताएंगे, और कैसे पूरा रेस्क्यू मिशन आपने अंजाम दिया?
1: सर जैन, यहाँ पर कांगड़ा घाट पे कुछ श्रद्धालु जो हर की पौड़ी से जल उठाने आए थे, तो यहाँ से नदी यार पार कर रहे थे, इस वजह से तेज बहाव के चपेट में आ गए. और ये पार करने वक्त तेज बहाव था, तो उनका हाथ थक गया था, मतलब थक गए थे वो, तो पार करने वक्त तो डूबने लगे. तो मैं यहाँ पर मौजूद था ड्यूटी पॉइंट पे, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो मैंने लाइफ जैकेट पहनी और सीधे उसको बचाने के लिए कूद गया. साथ ही मेरे जो सहयोगी थे, उन्होंने थ्रो बैक की मदद से हमने सकुशल रेस्क्यू किया.
0: ये पूरा एक टीम एफर्ट है. और कमांडेंट साहब पे जाने से पहले मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो टीम के और भी लोग थे, क्योंकि आप सीधे पानी में कूदे और लोगों को लगा कि ये जो आपने जो काम करा, कितना जबरदस्त, ऑफकोर्स बहादुरी का काम है, लेकिन आपकी टीम भी आपके साथ थी, तो किस तरीके से आपकी टीम ने आपकी मदद की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में?
1: सर जैसे कि हम, ये टीम वर्क है हमारा, तो जैसे कि हमारे कुछ मेंबर पानी में कूदते हैं, कोई अगर डूब रहा होता है तो लाइफ जैकेट की मदद से, अगर हम अप्रोच नहीं बना पाते तो हम थ्रो बैक की मदद से वहां पर उसको रोप के माध्यम से हम किनारे पे ले आते हैं.
0: नितेश, आप हमें दिखाना चाहेंगे अगर आपके बाकी साथी भी हों इस वक्त आपके साथ?
1: सर सर क्यों नहीं सर, बगल पैक.
0: नितेश, आप एक बार हमें सबका नाम भी बता दीजिए. आप लोग हीरोज हैं, सबका नाम लोगों को पता होना चाहिए. और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक वेयर दे आर स्टिल ऑन द ड्यूटी. दे आर टॉकिंग टू अस व्हाइल बीइंग ऑन द ड्यूटी. दे आर स्टिल, देयर टीम मेंबर्स आर देयर कीपिंग एन आई ऑन द रेजिंग रिवर एंड रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी. वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट दे हैव बीन एबल टू टेक आउट द टाइम. नितेश, जरा अपनी टीम के मेंबर्स, हम ये देख पा रहे हैं आपकी टीम के लोग, तो आप लोगों का जो कितने लोग यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं? नितेश,
2: यहाँ पर हमारे अभी दो सब टीम डिप्लॉयड है जो कांगड़ा घाट पर है, और एक सब टीम हमारी वैरागी कैंप में भी डिप्लॉयड है, और एक सब टीम हमारी प्रेमनगर आश्रम में भी डिप्लॉयड है.
0: ये आपको अभी भी दिख रहा होगा बहाव कितना तेज है. मैं कमांडेंट साहब से भी पूछना चाहूंगा, बिकॉज ये बड़ा जिसको हम हीरोइक एफर्ट बता रहे हैं, कितना कमाल का आपने काम किया है. लोग अर्पण यदुवंशी जी, आपकी टीम की, नितेश के इस डेयरिंग रेस्क्यू की बहुत तारीफ कर रहे हैं. इतना जबरदस्त बहाव था कि शायद कोई सोच भी ना सके उस पानी में अपनी पैर को रखने का. किस तरीके से ट्रेनिंग होती है आपकी टीम की सर, और क्या ड्रिल रहती है?
3: देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. देखिए, मैं आप यही बताना चाहता हूँ आपको कि अभी फिलहाल में मॉनसून जो है अपने चरम पर है उत्तराखंड में, और विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट आईएमडी द्वारा जारी किया गया है, और हमारी 8 टीम जो है वो हरिद्वार और आसपास के जनपदों में तैनात हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए, जो कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. आपने ट्रेनिंग की बात की, तो मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सभी जो लड़के हमारे जो तैनात हैं, ये दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड इन डीप डाइविंग एंड ऑल एडवांस वाटर रेस्क्यू टीम्स, एंड दे आर ऑल्सो इक्विप्ड विद ऑल द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स लाइक अंडर वाटर ड्रोन, रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय. और आपने जिस हमारे लड़के से बात की, नितेश खेतवाल, ही हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड लास्ट ईयर फॉर his extraordinary courage by honorable CM sir also. Last year भी इसने काफी लोगों की जान बचाई थी, और last year की बात करूं मैं तो 240 rescue operations में लगभग 500 लोगों की जान बचाई थी कावड़ की.
0: Wow.
3: इसी टीम ने हमारी they are all on ground heroes हैं ये सब लोग, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो हमको जो डायरेक्शंस

0: कावड़ यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इट्स अवर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड ऑल अवर टीम आर 24/7 अलर्ट और अच्छा काम वो कर ही रहे हैं वो उनके पीछे पूरा उनको
1: सर, मतलब अच्छा काम से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, कमाल की ब्रेवरी इसमें। और जैसे आपने बताया पिछले साल 500 लोगों की जान बचाई गई थी। नितेश मैं तुमसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये सोचना भी शायद मुश्किल होगा कि इस तरीके से पानी में कूदना और अपनी जान पे खेल के किसी और की जान बचाना, कभी कोई शंका आती है जब कोई दिखाई पड़ता है या वो सब चीजें अब पीछे छूट चुकी हैं, ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई सामने दिखता है मुसीबत में तो बस कूद जाना है उसको बचा के लाना है?
2: हाँ सर, हमारी साल में ट्रेनिंग बहुत वो चलती है अलग अलग जगहों पर। हमारी टीम रेस्क्यू के मतलब डीप डाइविंग हो गया, अंडर वाटर सरफेस रेस्क्यू हो गया और राफ्टिंग कॉम्पिटिशन ये वे सब पार्टिसिपेट करती है, तो इससे डर खुल जाता है हमारा थोड़ा सा।
1: आपका डर खुल जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोग जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि देखो भाई ये तो हीरो हैं, लोग मतलब कॉमिक्स कैरेक्टर की बात करते हैं, असली जिंदगी के हीरो आप लोग हैं, तो जब लोग आपको आते हैं बताते हैं तो क्या सेटिस्फैक्शन होता है? किसी की जान बचाने से बड़ा तो खैर क्या ही सेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन जब आपको लोग हीरो से तुलना करते हैं तो क्या बोलते हैं आप उन्हें?
2: अच्छा लगता है सर, हमारे कमांडेंट साहब और हमारे जो टीम लीडर हैं हम पे इतना भरोसा करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रखा है। तो कमांडेंट साहब के निर्देश के से हम इतना बढ़िया रेस्क्यू कर रहे हैं, वो हमें टाइम टाइम पे गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका कि आप इस तरीके से वहाँ पर तैनात हैं। लोगों को इससे बहुत कॉन्फिडेंस है कि उनके साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए आप उनकी जान बचाने के लिए वहाँ तैनात हैं। और जो आपने किया है, हैट्स ऑफ टू यू सर, सल्यूट फ्रॉम अस एंड माय एंटायर टीम। हम लोग बहुत इस वीडियो को देखकर प्रभावित हुए एंड कमांडेंट साहब आपका भी एक इस तरीके की टीम को प्रोत्साहित रखने का, उस टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखने का, सो दैट दे कैन जंप इनटू द हार्म्स वे व्हेन मेनी पीपल वोंट इवन डेयर। सल्यूट टू यू नितेश एंड टू योर एंटायर टीम फॉर दिस फैंटेस्टिक वर्क। थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने।
3: On that one, we're slipping into a very short break. Come right back. Lots more lined up.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
11: We are over, Jimmy.
12: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
14: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
15: फ्रॉम द न्यूज रूम to the studio, to the thick of political action.
16: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: हिंदुस्तान।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: हिंदुस्तान

0: everyone is speaking about right now is the violence that happened, the crude language that was used, and whether people should be made to pay for their consequences. What has the CJP said? Withdraw all the FIRs across the country, irrespective of what the Supreme Court said, irrespective of whether they have criminal antecedents, irrespective of whether they have committed a serious crime. Withdraw all FIRs or we are going to hit the streets. But when C voter asked the people, 35% said withdraw all FIRs, 23% said spare peaceful protesters, and 33.8% said probe all FIRs, only 7.4 said can't say. Should police brutality during protest be probed? Obviously. 62% people said yes, police brutality should be probed. 17.1% said no, 20% said can't say. Then, should police act against abusive language used by protesters? 54% said yes. Only 26.9% said no and 18% said can't say. And which is what brings us to the question, Smriti Chandel, many people today are saying, and this young girl Ruchika Singh, you know, who said some pretty crude, offensive things about the Prime Minister, now an FIR has been filed against her on your complaint. People are saying ki bhai freedom of expression bhi to hota hai. Theek hai, bachchi hai, but usko jail mein thod na dalenge aap. FIR kara diya, but isn't this an overkill?
1: नहीं गाली गलौज वो गाली गलौज क्षम्य नहीं है. जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल क्षम्य नहीं है. और हम सभी के बच्चे सोशल मीडिया पर हैं और अगर इस तरह की बातों को समर्थन आप सभी लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं. हम सबके बच्चे अगर इस तरह की भाषा घर में इस्तेमाल करने लगे तो कोई उसको जो है अच्छा नहीं मानेगा.
0: आपको लगता नहीं है कि प्राइवेट लाइफ में, हॉस्टल में, कॉलेज में गाली गलौज तो होती है ना? करना चाहिए? नहीं, करना नहीं चाहिए. बट क्या उसके लिए जेल जाना चाहिए किसी को?
1: प्राइवेट लाइफ में या हॉस्टल लाइफ में इस तरह की गाली गलौज और भाषा तो मैंने नहीं सुनी है ना. और जो लोग करते होंगे उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जो मेरी नजर में आया और इस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी स्वर्गवासी माता जी के बारे में और एक फॉरेन लेडी लीडर के बारे में इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत.
0: क्योंकि आशुतोष जी, आपने एक कमेंट किया था मेरे ही शो पे जब आपने कहा था ये एग्जूबरेंस है. पर यहाँ पे सर्वे में पीपल आर सेइंग, 54% आर सेइंग दैट इफ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप एट अब्यूज, देयर आर सम पीपल एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट दे हैव डन इट ओनली फॉर चीप थ्रिल्स एंड वायरलिटी. मेनी ऑफ देम हैव सेड थिंग्स लाइक अरे उस मोदी को मार दो, अगर मोदी यहाँ पे होता तो मैं तो उसको खत्म कर देता. कैन दिस बी अलाउड टू पास एज एग्जूबरेंस? पीपल इन द सर्वे डोंट अग्री.
2: बट आशुतोष, एक बात बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को गाली नहीं देता और गाली देना भी नहीं चाहिए सार्वजनिक जीवन में. हम 7 लोग यहां पैनल पे बैठे हुए हैं, कोई ये कह सकता है कि हमने अपने जीवन में गाली नहीं दी? मैं तो कह सकता हूं कि मैं रोज कम से कम गाली देता हूं और अपने मित्रों के बीच में बातचीत में करता हूं, कोई बुरा नहीं मानता उस बारे में. देखिए, दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि मैं एक चीज का बड़ा बहुत पक्षधर हूं और मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है. बच्चों को FIR करके जेल नहीं भेजना चाहिए. आप उनको बुला के डांट दीजिए, 2 थप्पड़ लगा दिए, अब FIR करके जेल भेजना ये कुछ ज्यादा ही है.
0: तुषार,
2: ये FIR करना मुझे बिल्कुल आपकी राय से सहमत नहीं. प्लीज,
3: वी आर कंफ्यूजिंग 2 थिंग्स. इट्स नॉट अबाउट अ चाइल्ड और एन एडल्ट. दिस इज अ कंट्री वेयर समवन मेड अ कमेंट ऑन समवन एल्सस रिलीजन and an innocent tailor was butchered in the name of Sir Tan Se Juda. Let's be very clear. Now, that was said in public sphere. That was said before the camera. The lady in question beat a child, and she is not a child from what I have read of public records. She's 25 years old. She said some very hard abusive words on camera. She said it for virality. It wasn't a private conversation. She willingly made it public. She knew she was on the camera. So the differentiation needs to be clear. Either we become such a liberal society that we reject blasphemy laws, we reject FIRs on abusive language, we become free speech absolutists. Either then we have blasphemy laws, we need at least need to probe an FIR like this, which is what your survey also says, that probe the FIRs. Don't put them in jail, but at least probe the FIRs. That's what majority of the surveys are saying, that probe karo, फिर देखो क्या करना है.
0: राशिद किदाई,
4: आई थिंक पद्मजा, वी आर मेकिंग यू नो सिंपल थिंग्स लुक्स कॉम्प्लेक्स. दिस वाज अ पॉलिटिकल एजिटेशन एंड वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशंस वेयर पीपल हु वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट. That was the allegation, and they were brought in as chief ministers. I can give you example.

0: खाओ
1: भाई, एक चीज बताओ गाली का है उसमें, अरे उसमें उसमें गाली थोड़ी है। जर्सी काउ इज नॉट अ जर्सी काउ इज नॉट एन अब्यूज यार, कम ऑन अशोक जी, यू आर गेटिंग मोर टची देन सोनिया गांधी हरसेल्फ।
0: एनीबॉडी कॉल्स माय मदर सच थिंग आई वुड हैव स्मैश्ड,
1: ओह सी स्कॉट, एनीबॉडी हु कॉल्स माय मदर सच थिंग आई वुड स्मैश, बट एनीबॉडी हु कॉल्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज आल्सो अ सन ऑफ अ लेट मदर हु आल्सो द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिलीव एज हिज फादरली फिगर, उनको करने दो क्योंकि वो राहुल जी का ओपोनेंट। और किसी दूसरे के बाप को
2: राशिद किद भाई, दैट the Telangana government, the Telangana police has also filed FIRs, and including an FIR that names the head of Meta. So this is also a process in law. Look, actions have consequences, and I say this as somebody who does believe that just an abuse, putting somebody in jail for abuse, is a very slippery slope. What happens then is that the Telangana police last year picked up two journalists, women journalists, at 5 in the morning and put them in jail. Why? Because some farmer on their program had abused the chief minister of Telangana. Yeah. These journalists were accused of creating enmity. 2026, again journalists were picked up and jailed in Telangana. So the fact is that today Bengaluru police has filed FIRs against a woman who was carrying a poster of Umar Khalid and Sharjeel Imam during the CJP protests. Yeah. It's a matter of process.
3: Yes, and process is wrong. And let me tell you, whichever government does, this is not only uncalled for, it is very unfortunate. And it should not take place in a democratic setup. What we are debating here, Padmaja, it's a serious matter. The question was asked about, you know, political agitation and what should be the action. And in which I cited several examples in Mizoram, where the Indian Air Force had supposedly bombarded, you know, the socialist people. And then secondly, the same person was brought in as chief minister. Then can there be a greater kind of thing? But the state has a state, and this in this case being Indian state is very large hearted.
2: Okay, there should be magnanimity, and I actually obviously want to point out, because there are a lot of people who are on camera abusing, trying to get this cheap virality. Now they have come out with equally groveling apologies as well. Let's listen in.
4: फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट होगा।
5: मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश की इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी।
6: सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है, छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है, उस सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफी।
7: माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ।
2: तुषार गुप्ता, शर्मिंदा हैं, माफी मांग ली है, शो अ लार्ज हार्ट। तुषार गुप्ता, यस, आई डोंट नो तुषार इफ यू कैन हियर मी।
8: या, इज दैट फॉर मी?
2: यस, गो ऑन।
8: Yeah, I just wanted to point out that we all are discussing the wrath of the state and how much magnanimity the state should show. Has anyone in the opposition ever commented on the Hate Speech Act in Karnataka? That where hate speech is confused for a security issue, where hate speech is confused for something that can cause a law and order issue, वही मैं कह रहा हूं बार बार, आप दो नाव की सवारी नहीं कर सकते। या तो फ्री स्पीच एब्सोल्यूट हो जाइए कि इस देश में फ्री स्पीच है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो धर्म की बात हो, इंसान की बात हो, विषय की बात हो, या फिर अगर लॉज हैं तो कोई अगर एफआईआर फाइल कर रहा है, इफ एन इंडिविजुअल is angered by someone abusing the prime minister, can the state dictate that individual that you do not fire an FIR? Can the state dictate the police that you do not take the FIR from that individual? Can the state dictate the police that you do not act upon that FIR? Look, if I am angered or you are angered by someone making a comment on Ashutosh, who can stop us from filing an FIR in support of Ashutosh? You tell me.
2: Ashutosh?
3: It's Tushar's understanding of these things.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: राजा मसाला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मस्त।

0: रैना तू सतरंगा जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: गुड इवनिंग एंड वेलकम, यू आर ऑन इंडिया मैटर्स दिस फ्राइडे नाइट विद मी शिव अरूर। लेट्स गेट यू स्ट्रेट टू द टॉप स्टोरीज विद ट्रैकिंग। दिल्ली को

0: में पत्थर ला रहे हैं भर के, टाइल तोड़ के ला रहे हैं, सिल्ली के पत्थर तोड़ के ला रहे हैं, यानी पूरी तैयारी थी तभी बैग में ला रहे हैं ना। आपको जगह दे दी गई, बैठ के वहाँ प्रोटेस्ट करो, वहाँ से आप उठाओ सीधे अपना पथराव शुरू कर दो। स्टूडेंट जिनको बताया जा रहा है, कम से कम 1.5 लाख लोग थे, पुलिस क्या थी, 2-3 हज़ार थी।
1: सुनीता जी, आपने देखा होगा कि आज कुछ आप जैसे पुलिस फैमिलीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन्होंने पूछा हम किसके पास जाएं न्याय मांगने के लिए, आप उनसे अग्री करते हैं?
2: हम लोग किसके पास जाएं? एक्चुअली बात तो यही है ना कि ये सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ये सबके लिए खड़े हैं, लेकिन इनके लिए कौन है? एट द एंड इनके साथ जो हुआ है, अब ये 1.5-2 महीना का बेडरेस्ट बोल दिया इनको, 1.5-2 महीने के लिए नहीं जा सकते काम पे, घर पे हैं। मेरे को भी पापा को देखना होता है, 10 चीज़ें होती है, घर बार हर एक चीज़ देखना होता है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज मेरे को इनके साथ रहना ज़रूरी है। अभी हमारे तो सारे काम अटक गए ना, हम लोग किसके पास जाएं इन सब के लिए? कोई तो होना चाहिए ना जो हमारे बारे में भी सोचे, हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इतना इनके साथ हुआ, इनको जाके लेडी हार्डिंग में छोड़ दिया गया, कोई आगे देखने के लिए भी इन था,

0: तो कुछ तो होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए इसके लिए, और जो भी दंगा जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको प्रोत्साहन ना मिले आगे फिर ऐसे स्टूडेंट्स का बहाना करके या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट का बहाना करके इस तरह से पुलिस वालों पे खुल्लम खुल्ला आतंक ना मचाया जाए। ये तो मैं तो फैक्ट कहूँ तो मेरे को तो ये सब आतंकवादी गतिविधियाँ लग रही है कहीं ना कहीं, और किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है।
1: आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स हम समझ सकते हैं सुनीता जी। हेमेंद्र जी, आप एक पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, अब आप ड्यूटी पे जब जाएंगे तो उसी हौसले के साथ क्या आप जाएंगे ये सब होने के बाद?
2: बिल्कुल, और उससे अच्छा और उससे अच्छी ड्यूटी करने की कोशिश करूँगा। ये तो बाय नेचर एक हादसा हो गया जो मेरे को कई सबक दे गया जिंदगी के। अभी जब भी फिट होके जाऊंगा तो और अच्छे ढंग से अपनी नौकरी को करूंगा।
1: आप कोई संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कुछ मैसेज?
2: मैं तो सभी पढ़ने वाले लिखने वाले सभी बच्चों से कहता हूं कि आप अपने माँ बाप जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, उस पर ध्यान दो। इसमें आपका फ्यूचर ख़राब होता है, कुछ भी होता है, गलती से एक मुकदमा भी लग जाता है तो ना तो आप एक प्राइवेट नौकरी के लिए रह जाते ना एक सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा है उससे अच्छा अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, ताकि कल को एक सुनहरा भविष्य आपके सामने इंतजार कर रहा है, आप उस पे और अच्छा बन के उभरो।
1: हेमेंद्र जी और सुनीता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं दैट यू गेट वेल सून एंड वी विल ट्रैक बोथ साइड्स ऑफ दिस स्टोरी दैट हैज पोलराइज्ड सो मेनी ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। Tamil Nadu Chief Minister Vijay is finding himself caught in the Kaveri River sharing war between his state of Tamil Nadu and Karnataka, where the Kaveri flows from. A day after the Kaveri River Water Management Authority ordered the release of 3,500 cusecs of water daily to Tamil Nadu for 15 days, pro-Kannada groups are now targeting Vijay directly. They've removed Vijay's film posters in Bengaluru, and theatres in Karnataka are suspending screenings of Vijay's new film Jananayagan. At Bengaluru's Urvashi Theatre, screenings of Jananayagan were halted following a police advisory. Kannada organisations and farmers opposed the release of Kaveri water to Tamil Nadu and argued that Karnataka itself is facing a water shortage and that releasing water would adversely affect the state's farmers and agriculture. The Karnataka government, it's a Congress government under D.K. Shivakumar, has postponed a proposed August 3rd meeting between D.K. Shivakumar and Chief Minister Vijay from across the border in Tamil Nadu on the Mekedatu project, citing the fact that the atmosphere has become tense and dark. In Tamil Nadu, the DMK mouthpiece has slammed Vijay and said his visit to Karnataka will weaken Tamil Nadu's water rights. Remember, both the Karnataka government as well as the Tamil Nadu government are Congress governments. The TVK is the lead party in Tamil Nadu, but the Congress is a coalition. So it's an interesting, if curious, situation where you've got the Congress in power in both governments, but they are at daggers drawn.
3: It is the duty of the central government, the BJP government over here, to intervene in this issue and make sure Tamil Nadu gets its share of water. Our Chief Minister, Mr. Joseph Vijay, is planning to meet the Karnataka Chief Minister in a few days in Bangalore, and I hope he succeeds in persuading the Karnataka Chief Minister, Karnataka government, to release the due share of water which Tamil Nadu is rightfully demanding.
4: We will, the order, the stand of Karnataka government is that I have to take my opposition party leaders into confidence. I have to seek the legal advice. Then I will take a call after discussing with them. So last 100 years, I would like to tell you, this is the lowest which has been left out to Tamil Nadu. But we will request all of them. Let us all work together.
5: When you talk about Kaveri River Basin, Chief Minister clearly said he warned farmers not to grow crops here because of the drought. At the same time, in the month of June, Karnataka government decides to release 3.5 TMCA of water to Tamil Nadu.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट्स।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: राजा आज

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
4: सितारा जहां, जोर मसाला।

0: prena tu sataranga. Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura. Sada, sada, sada muskura. Rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, re, de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
1: Bojo paints, rang bana rahe.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
5: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I

0: देश का टायर जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: We are over Jimmy।
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी

0: strangers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
1: When stories have impact.
2: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
1: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
0: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team Any TV will go from strength to strength.
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
6: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby powered air.
9: Welcome, you're watching Any TV 24/7 with Tanisha Avasthi. Let's get you the top headlines of the day. Delhi court has sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others to lifetime imprisonment for the murder of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. The court described the killing as the most brutal while awarding the sentence. A zero FIR has been registered against a 25-year-old Noida resident. Her name is Ruchika Singh. And this is over the alleged abusive and objectionable remarks against the Prime Minister during a protest at Delhi's Jantar Mantar on July 23rd. Family members of Delhi police personnel injured during the violence of the CJB protests have now spoken out, recounting the ordeal faced by the officers on duty. One officer's daughter alleged that her father was almost lynched by a violent mob and returned home with shattered helmet and blood-soaked uniform. The Kaveri water dispute has spilled over to the silver screen, disrupting screenings of Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay's film Jananayagan in Karnataka. As protests intensified over the release of Kaveri water to Tamil Nadu, several theatre owners voluntarily cancelled the show, citing law and order concerns, while posters and banners of the film were also removed. Massive search and rescue operation is underway after an avalanche struck Pakistan's broad peak, leaving renowned mountaineer Nirmal Purja and 9 other climbers missing. Now helicopters, drones and ground teams continue to search the terrain as well. We start in this edition with extremely disturbing news that's coming in. We learn that there has been a terror attack in Jammu and Kashmir's Kulgam. There has been one migrant labor that has been killed and another has sustained serious injuries after the terrorists opened fire on them. And this happened in South Kashmir's Kulgam. In fact, this news just came in an hour back. Now, the terrorist, we learn, targeted the two non-local laborers. Authorities have now immediately shifted both the victims for treatment. Following the attack, what we learn is that the security forces have rushed to the spot, cordoned off the area and launched a search operation to track down the attackers. There are searches that are continuing in the area. Remember, what we're talking about here is a terror attack that has taken place in Kulgam in South Kashmir. My reporters are on ground and tracking the latest for us in the story. Let's take a listen in.
10: इस वक्त मैं जीएमसी अनंतनाग में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी दो जो है बॉडीज को लाया गया है, जिसमें एक भूपिंदर और दूसरा दीपक नामी, जो एक ब्रिक किलन में यानी एक जो ईंट का भट्टा है उसमें मजदूरी करते थे। वो देर रात गए, ये जो वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ है जिसमें दोनों को जो है जख्मी किया गया, हालांकि एक की जो है मौके पर ही जो है मौत वाका हो गई, लेकिन तो जो दूसरा है उसको जीएमसी अनंतनाग लाया गया था। लेकिन यहाँ पर भी जो है उसको अब सिकिम्स के लिए, जो जीएमसी सिकिम श्रीनगर है वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, मजीद ट्रीटमेंट के। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, एक की जो है यहाँ पे जो मजदूर है ब्रिक किलन में जो काम करता था उसकी मौत वाका हो गई। हालांकि इस इलाके को जो है कुलगाम है, ये जो है काफ़ी सेंसिटिव जोन माना जाता है और इस इलाके में काफ़ी जो है हद तक अगर हम कहेंगे टेरर अटैक्स ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, ये पिछले हफ्ते से दूसरा अटैक है अभी जो जनूबी कश्मीर में हुआ है, यानी कि साउथ कश्मीर के इलाके में ये दूसरा अटैक है, क्योंकि इससे पहले जो है लालचौक अनंतनाग में एक अटैक हुआ है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाका हो गई, जिसमें एक टेररिस्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल को जो है अपना निशाना बनाया, अपनी गोलियों का निशाना बनाया, जो मौके पर ही जो है फौत हो गया। और उसके बाद अभी दूसरा अटैक ऐसा है जो कुलगाम के केलम इलाके में है, जहाँ पर एक जो है ब्रिक किलिन यानी कि जो ईंट का भट्टा है वहाँ पर मजदूर काम करे, तो देर रात गए वहाँ पर जो मिलिटेंट है यानी कि टेररिस्ट हैं उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस तरह के वाक़ इससे पहले भी होते रहे, क्योंकि जो ब्रिक किलिन है वहाँ पे इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो गए और कई जो है मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि फिर जो है पुलिस ने काफ़ी सीसीटीवीज लगाए थे इन ब्रिक किलर्स पे और काफ़ी मॉनिटर रखा था इन पे, ताकि जो ब्रिक किलर मजदूर है उनको बचाया जा सके। लेकिन अभी जो है टेररिस्ट ने कुलगाम के इस इलाके में अपनी प्रेजेंस दिखाई है और ये जो है ये हमला उन्होंने आज वहाँ पर दिया हुआ है।
11: Very tragic news coming from Jammu and Kashmir's Kulgam district. Terrorists have carried out a target attack on migrant workers this evening. One worker has been killed, another is critically injured. Injured has been shifted to Government Medical College, Anantnag, where he is being operated upon. His condition is stated to be critical. This is the second targeted attack by terrorists in South Kashmir in less than 10 days. Last week, a policeman was shot from point blank. He was killed in Anantnag's Lalchok area. And after that, a massive crackdown was launched by Jammu and Kashmir police and security forces. More than 3,000 suspects have been detained. And there have been questions why such a large-scale crackdown and arrests have been made, which clearly means perhaps security forces didn't have the pinpoint information. Even as the attacker who killed the policeman fled and he was captured on CCTV camera, and he, what every police and other sources say, he's a Pakistani terrorist and he was not a local. And in this case, it's not clear who has carried out the attack, but clearly it shows terrorists again want to launch these targeted attacks, which were actually stopped at least 3-4 years back when there was a number of attacks, but all those involved behind those attacks were tracked down, either killed in encounters or arrested. But we see after 3-4 years, we see return of terror attacks and target attacks in the valley at a time when Amarnath Yatra is going on. And thousands of security forces, additional companies have been deployed besides a massive existing security structure available in the valley. 670 companies of paramilitary forces, which is like 67,000 additional troops, have been deployed for the Yatra. And despite that, we see this attack in Kulgam and also in Anantnag. So which actually raises concern about the security situation in the valley, as we all know that this all militancy all depends on the intentions across the border. If they want to keep the pot boiling, they can carry out such attacks. But it is clearly the innocent people who come here to eke out their living, migrant workers, and they have been targeted by this horrific terror attack in Jammu and Kashmir's Kulgam district this evening.
9: And now moving on, the families of injured police officers during Jantar Mantar protest are now demanding justice. The families of the injured personnel have said that the officers were simply carrying out their duty when they came under attack. One family member has claimed that his father was almost lynched by the mob. According to Delhi police, nearly 200 police personnel were injured after protesters allegedly turned violent, attacked the security personnel, pelted with stones. Now, there are several of the officers who have sustained injuries while trying to disperse the crowd and restore law and order. Meanwhile, what we also learn is that Rahul Gandhi today snapped and reported while he was asked about the attack on police officers by the protesters, by one of the reporters inside the Parliament House. Here are some reactions coming in, first from the family members of the injured policeman, and then to how Rahul Gandhi responded when he was faced with a question on the same.
12: He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था. मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं. उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी.
13: 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था. मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं. शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे. उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है.
14: सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिक अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं. लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है.
15: घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
16: भैया बीजेपी के हो गया?
15: बीजेपी का पुलिस वाले की तो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे हैं. घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
16: भैया बीजेपी के हो गया?
15: बीजेपी का पुलिस वाले की तो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे हैं.
9: A video of a woman protester at Jantar Mantar using derogatory language against the Prime Minister that led to outrage has now been booked. Now, while there is another woman seen recording a reel with security personnel, has issued an apology. An FIR has been registered against Ruchika Singh over the alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. The case has now been transferred to Delhi's Sansad Marg Police Station for further investigation. CJP spokesperson Saurav Das, meanwhile, has condemned the police action, calling the FIRs and criminal proceedings against the protesters illegal. Meanwhile, what we also learn is that Delhi Police has intensified its probe after identifying nearly 2,800 individuals and alleged miscreants through facial recognition. Investigators are now tracking masked rioters by analysing nearly 400 CCTV feeds and gathering digital evidence.
17: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है. इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज़ चलते फिरते लोग यहाँ पर गाली देते. आपने बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो.
18: जिंदगी जीते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं, वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में।
9: All right, we have a breaking news coming in at this point in time, and the Prime Minister, we believe, has dropped another Instagram video. This time he has addressed the galis, the abusive language that was directed at him. This is an Instagram video that the Prime Minister has given out. He has said, in fact, that the abusers have never solved anything. He also went on to say that there were some

0: mischievous kids who gave quote unquote bhaddi gali. He's for the first time, ladies and gentlemen, the Prime Minister has issued a statement and has addressed the issue of abusive languages, the derogatory languages that were used against him at the protests that took place here in Delhi and in other states as well. The Prime Minister addressing the concern of using of abusive languages has gone ahead to say that there were some mischievous kids who had used derogatory language against me. He has in fact gone ahead to say that it's time that these youth must be directed in the right direction, and he has said that all of them were misguided youth who had abused him. The first statement coming in, ladies and gentlemen, from the Prime Minister, he has called out the abuses that were directed at him, and he has said in fact that not just him, his mother was also abused as well. The Prime Minister dropping another video. Let's listen in to that full statement coming in from the Prime Minister.
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: All right, that was Prime Minister's Instagram video for the first time he has addressed the abusive, the derogatory language that was used against him in the disguise of the protest that was taking place in Jantar Mantar. For the first time, the Prime Minister has addressed the issue. He's given a statement. He has said that these were the misguided youth of the country who have abused not just him, but also his mother. He's in fact given a very big hint by saying that filing cases against them, filing FIR against them is not the solution, and that these youth must be guided. Vasudha is joining me on the phone line on that note. Vasudha, a very big message coming in from the Prime Minister, where on one hand we see that a zero FIR, that FIR in several other states has been registered, not just against one individual, but against many individuals. The Prime Minister, on the other hand, releasing a video saying that FIR and slapping legal action is no solution against this

0: We're starting this edition with extremely disturbing news that's coming in. We learned that there has been a terror attack in Jammu and Kashmir's Kulgam. There has been one migrant labourer that has been killed and another has sustained serious injuries after the terrorists opened fire on them. And this happened in South Kashmir's Kulgam. In fact, this news just came in an hour back. Now, the terrorist, we learned, targeted the two non-local labourers. Authorities have now immediately shifted both the victims for treatment. Following the attack, what we learned is that the security forces have rushed to the spot, cordoned off the area and launched a search operation to track down the attackers. There are searches that are continuing in the area. Remember, what we're talking about here is a terror attack that has taken place in Kulgam in South Kashmir. My reporters are on ground and tracking the latest for us in the story. Let's take a listen in.
1: इस वक्त मैं जीएमसी अनंतनाग में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी दो जो है बॉडीज़ को लाया गया है, जिसमें एक भूपिंदर और दूसरा दीपक नामी, जो एक ब्रिक किलन में यानी एक जो ईंट का भट्टा है उसमें मजदूरी करते थे, और देर रात गए ये जो वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ है जिसमें दोनों को जो है जख्मी किया गया। हालांकि एक की जो है मौके पर ही जो है मौत वाका हो गई, लेकिन तो जो दूसरा है उसको जीएमसी अनंतनाग लाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जो है उसको अब सिकिम्स के लिए, जो जीएमसी सिकिम्स श्रीनगर है वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है मजीद ट्रीटमेंट के। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है एक जो है यहाँ पे जो मजदूर है ब्रिक किलन में जो काम करता था उसकी मौत वाका हो गई। हालांकि इस इलाके को जो है कुलगाम है ये एक जो है काफ़ी सेंसिटिव जोन माना जाता है, और इस इलाके में काफ़ी जो है हद तक अगर हम कहेंगे टेरर अटैक्स ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, ये पिछले हफ्ते से दूसरा अटैक है अभी जो जनूबी कश्मीर में हुआ है, यानी कि साउथ कश्मीर के इलाके में ये दूसरा अटैक है, क्योंकि इससे पहले जो है लालचौक अनंतनाग में एक अटैक हुआ है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाका हो गई, जिसमें एक टेररिस्टों ने एक पुलिस कांस्टेबल को जो है अपना निशाना बनाया, अपनी गोलियों का निशाना बनाया, जो मौके पर ही जो है फौत हो गए। और उसके बाद अभी दूसरा अटैक ऐसा है जो कुलगाम के केलम इलाके में है, जहाँ पर एक जो है ब्रिक किलिन यानी कि जो ईंट का भट्टा है वहाँ पर मजदूर काम करे, तो देर रात गए वहाँ पर जो मिलिटेंट्स है यानी कि टेररिस्ट हैं उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस तरह के वाक़ा इससे पहले भी होते रहे, क्योंकि जो ब्रिक किलिन है वहाँ पे इससे पहले भी इस तरह के वाक़ात हो गए और कई जो है मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि फिर जो है पुलिस ने काफ़ी सीसीटीवीज लगाए थे इन ब्रिक किलिनर्स पे और काफ़ी मॉनिटर रखा था इन पे, ताकि जो ब्रिक किलिन मजदूर है उनको बचाया जा सके। लेकिन अभी जो है टेररिस्टों ने कुलगाम के इस इलाके में अपनी प्रेजेंस दिखाई है और ये जो है ये हमला उन्होंने आज वहाँ पर दिया हुआ है।
2: Very tragic news coming from Jammu and Kashmir's Kulgam district. Terrorists have carried out a target attack on migrant workers this evening. One worker has been killed, another is critically injured. Injured has been shifted to Government Medical College Anantnag, where he is being operated upon. His condition is stated to be critical. This is the second targeted attack by terrorists in South Kashmir in less than 10 days. Last week, a policeman was shot from point blank. He was killed in Anantnag's Lalchok area. And after that, a massive crackdown was launched by Jammu and Kashmir police and security forces. More than 3,000 suspects have been detained. And there have been questions why such a large-scale crackdown and arrests have been made, which clearly means perhaps security forces didn't have the pinpoint information. Even as the attacker who killed the policeman fled, and he was captured on CCTV camera, and he, what every police and other sources say, he's a Pakistani terrorist and he was not a local. And in this case it's not clear who has carried out the attack, but clearly it shows terrorists again want to launch these targeted attacks, which were actually stopped at least 3-4 years back, when there was a number of attacks, but all those involved behind those attacks were tracked down, either killed in encounters or arrested. But we see after 3-4 years, we see return of terror attacks and targeted attacks in the valley at a time when Amarnath Yatra is going on. And thousands of security forces, additional companies have been deployed besides a massive existing security structure available in the valley. 670 companies of paramilitary forces, which is like 67,000 additional troops, have been deployed for the Yatra. And despite that, we see this attack in Kulgam and also in Anantnag. So which actually raises concern about the security situation in the valley. As we all know that this all militancy all depends on the intentions across the border. If they want to keep the pot boiling, they can carry out such attacks. But it is clearly the innocent people who come here to eke out their living.

0: If something is rebuking the possibility of good working of a state, the police will come into play, right? And FIR, again, it is just an investigative prospect. Again, as sir was talking about legal consequences and social consequences as well, right? I would like to say, yes, legal consequences will have social consequences, but at the end, if there will be no legal consequences on certain prospects, there can be more harmful consequences at certain aspects as well. I
1: Okay.
0: have to
1: Kushal, how would you answer
0: be
1: that?
0: important.
1: Saying some legal consequences should be there.
2: यार फॉर
0: Sorry?
2: अब्यूसिंग अ पॉलिटिशियन, यार मैं तो इतना ही बोलता हूं, मेरे नसीब थे कि मैं इंस्टाग्राम के टाइम पे यंग नहीं था, पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर ठोक देते थे केस, ये लोग बेवकूफों के जैसे। इट इज रिडिकुलस, इट इज रिडिकुलस। पहले सीजेपी ने बच्चों को उकसाया, बच्चों को यूज किया, अब ये राइट विंग के एक सर्टन लोग बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं, सब लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करो, द लॉ इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया।
1: Yeah, I agree.
2: व्हाई डजंट एवरीबडी हैव द गट्स टू से इट? व्हाई एम आई द ओनली मपेट हु कीप सेइंग द
1: No,
2: लॉ इटसेल्फ
1: I say it
2: इज अ
1: every
2: प्रॉब्लम इन
1: day.
2: इंडिया?
1: Kushal, I echo your voice every day on my show. There is a problem with the law. I completely agree with you. This is over application of the law, misapplication of the law. You know, we don't have endless law and order machinery. Rajul, you agree with me?
3: Sir, I was trying to say about that itself, that I completely agree with what he says, because there can be some legal consequences. Legal consequences being, ये पुलिस का काम नहीं है, इट कैन बी साइबर सेल का काम. इफ एनी पोस्ट इज फाउंड हीनियस और ऑफेंसिव, टेक इट डाउन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू डू. यू नो, प्रोबेबली डोंट अलाउ दैट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट इफ पॉसिबल, इफ इफ दैट्स अ वेरी वेरी हीनियस पोस्ट फॉर दैट मैटर. But what beyond that? You cannot jail them for saying something in the end of the day. I think
1: Okay.
3: there's more important work for the government machinery to do.
1: I'm going to leave it there only because Pragati and Aditya, I want you to both know that, you know, your point is not, I'm not dismissing your point of view at all. I may disagree with you, but let me tell you that most people in my newsroom, most people I know in general, are 100% on board with what you guys are saying. They believe that Ruchika should be made an example of. They believe that the law is applicable. They believe that this is a punishable offense. Kushal, me and Rijul are actually a massive minority in this story, at least in my experience online and offline. So, you know, whether or not we disagree on this, the fact is it is a debate and it's important because how many millions of people might be incentivized to be edgy and angry and abusive on Instagram in order to gain virality? You know, outrage has been incentivized by this kind of thing. And the point that was raised by you about the context in which all of this is happening is especially important and warrants a discussion. And that's the reason I brought all of you on board. Thank you, Kushal. Thanks, Rijul. Thanks, Pragati. Thanks, Aditya, for being with
2: Thank
1: me
2: you. Thank
1: here
2: you
1: on
2: so much,
1: debate
2: sir.
1: number one on India Matters. Viewers, according to the Delhi police, at least 130 police personnel were injured during the July 20th Sansad Chalo protest, with several senior officers among those hurt after clashes broke out as protesters attempted to reach Parliament. They reached about 100 meters away. Now, nearly 2 weeks later, the families of those injured officers have come forward. They held a press conference in the national capital today, saying their side of the story has gone largely unheard in the noise of the CJP protests. At this press conference in Delhi, relatives of the injured personnel described the violence their family members faced while on duty. One officer's daughter said her father was almost lynched by a mob and returned home with a shattered helmet and blood-soaked uniform. Other family members spoke of personnel being pelted with stones, dragged, beaten, and left with serious injuries while trying to control the crowd. I'm now joined by one of those officers, an assistant sub-inspector, and his wife tonight. ASI Hemendra Kumar Rathi and his wife Sunita Rathi are live with me. Hemendra ji, Sunita ji, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद. Hemendra Rathi is an assistant sub-inspector viewer. He's live with us tonight. He has three facial fractures and one hairline fracture in his waist. His wife Sunita is by his side. They are traumatized. Hemendra ji, पहला सवाल आपके लिए, आपको क्यों लगा इस पर बात करना जरूरी है? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपके परिवार के लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे आज, जो अदर साइड की कहानी है वो भी सामने आए, आपको लगा क्यों लगा ऐसे?
4: मेरी ड्यूटी 20 जुलाई को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर इस प्रोटेस्ट के लिए लगाई गई थी ताकि वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट हो सके और हम लोग अपना वहाँ पे ड्यूटी को अच्छे ढंग से कर संभाल सकें। सुबह करीब 4 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और हमारे ACP थे वहाँ पे सुनील भारद्वाज साहब, उनके साथ उन लोगों ने भी हमको ब्रीफ किया। हमारी ड्यूटी थाने के बगल वाली बिल्डिंग में थी, करीब सुबह 10:30-11 बजे करीब उस ऑफिस के पीछे से गेट खुला रह गया, करीब वहाँ से 800,000 के करीब लोग घुस गए थे, जिन जो कि अपना जिनके बैग में पत्थर थे और जो छतों पे भी चढ़ गए थे। हम लोगों ने उनको बोला कि आप लोग बाहर चले जाओ, प्रोटेस्ट करने के लिए आपको बाहर जगह दी गई है, बैरिकेड लगे हुए हैं, आप लोग उसके पीछे रह के अपना प्रोटेस्ट करो। अचानक ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कि 2-3 किलो का पत्थर एक मेरे मुंह पे यहाँ पे आके लगा, जिससे कि मेरे मुंह पे 2-3 फ्रैक्चर हो गए थे और यहाँ और मेरे हिप लाइन पे जो हेयर लाइन है मेरी कमर की हड्डी की, उसमें मेरे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ। वहाँ पे पत्थर लगने के बाद मैं बेहोश हो गया था। करीब 2 बजे के करीब लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मेरे को होश आया तो वहाँ पर फिर मैं देखा तो मेरे आस पास में ही करीब 15-20 पुलिस वाले और थे जो कि घायल अवस्था में पड़े हुए थे काफ़ी। किसी के चोट लगी थी, किसी का सिर फूटा हुआ था, किसी का मुंह टूट रहा था, किसी के हाथ में लगी पड़ी थी, तो वहाँ काफ़ी कुछ हुआ। तो वहाँ डॉक्टरों ने उस दौरान ट्रीटमेंट जो मेरा किया तो उसमें मुझे पता लगा कि मेरे मुंह पे पत्थर लगने की वजह से 3 फ्रैक्चर हैं।
1: सुनीता जी, आपको क्यों लगा ऐसे कि जो आपके साइड का वर्जन है जो हुआ था उस दिन, अब ये सामने आना चाहिए पब्लिक के सामने?
5: बिल्कुल आनी चाहिए, ज़रूरी है हमारी बात सामने आना, क्योंकि हर किसी का घर परिवार होता है, हर किसी के अपने काम होते हैं। जब ये ड्यूटी पे थे उस समय मैं अपने फादर के साथ गुड़गांव हॉस्पिटल में थी, मेरे फादर वहाँ पे एडमिट थे गुड़गांव हॉस्पिटल में, और मैं वहाँ पे मैं ना टीवी देख सकती हूँ ना कुछ, क्योंकि मेरे को नहीं पता उस समय क्या चल रहा है। पापा एडमिट है, उनको उनकी देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे सुबह बात हुई थी, जब हुई थी उसके बाद बात नहीं हुई इनसे। शाम को 6:30-7:30 करीब मेरे पास इनका मैसेज आया, खाली वो भी कॉल भी नहीं आई, मैसेज आया खाली कि मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। मैं गुड़गांव से तो तुरंत आ नहीं सकती थी, मेरी सिस्टर लाजपत नगर रहती है और मैंने अपनी सिस्टर को कहा तो मेरी सिस्टर भी अपना काम वाम, उसका लाजपत नगर में स्टूडियो है, वो अपना काम वाम सब छोड़ छाड़ के अर्जेंट निकली इनके पास लेडी हार्डिंग में, और इनको जाके देखा तो वो खुद शॉक में थी। वो कह रही थी कि सोनू यहाँ पे कुछ इलाज हो नहीं पाएगा, यहाँ पे मतलब ऐसे ही कोई केयर नहीं हो रही थी लेडी हार्डिंग में, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई केयर नहीं थी इनकी ऐसी कि कुछ केयर वगैरह हो रही हो प्रॉपर। तो इनको फिर वहाँ से मेरी सिस्टर कैलाश हॉस्पिटल लेके गई, फिर इनका ट्रीटमेंट वहाँ पर कराया हमने। लेकिन ऐसे में मतलब मैं सोच रही हूँ मेरे जो हस्बैंड हैं वो नेशन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक स्टूडेंट्स का सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, वो कुछ हाथापाई नहीं कर रहे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा हमला होगा ये सोचना भी बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और एकदम से ऐसी चीज़ आती है और हम लोग फंस जाते हैं ऐसे, लाइक जो होता है गलत ही होता है, ये हमारा भी तो पक्ष है ना, हमारा भी तो कितना प्रॉब्लम है।
1: हेमेंद्र जी, अभी तक बहुत सारे आरोप सामने आए हैं, पुलिस पे आरोप लगाए गए हैं, पुलिस ने प्रोटेस्टर्स बच्चों पे अटैक किए, इस पे आप क्या कहोगे?
4: देखो उस समय क्या होता है, पब्लिक है, भीड़ है, 100 जने भाई पुलिस वाले ऊँची पटरी में बचाव में अगर वो छोटा मोटा कुछ आता पाई कर लेता है, बचाव में कुछ करता, आप उस समय की एक फुटेज बना लेते हो, उसको आप हर जगह दिखाते हो, देखो ये पुलिस वाले ने हमला किया, लेकिन उसके जो 100 जने चिपट गए हैं उसको मार रहे हैं पीट रहे हैं, वो बचाव में बेचारा कुछ तो अपने लिए कुछ तो करेगा। मेरे साथ में अपना ही बताऊँ, मुंह पे पत्थर लगने हैं, मुझे नहीं पता लगा मैं 3 घंटे किस दुनिया में हूँ क्या हूँ। मेरे को 3:11 मेरे चोट लगी, 2 बजे तक मैं बेहोश रहा हूँ, 2 बजे जब मुझे होश आया तब मुझे पता लगा, जब आसपास मैंने देखा 20-25 पुलिस वाले और पड़े हुए हैं, किसी का सिर फूटा हुआ था, किसी की नाक टूट रही थी, किसी का हार्ट टूट रहा था, बहुत बुरा हाल था अपनी ज़िंदगी में। पहली बार इतनी हमने ड्यूटियाँ करी हैं, किसान आंदोलन भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इस तरीके का पहले कभी भी कभी इस तरीके

0: जिनको बताया जा रहा है, कम से कम 1.5 लाख लोग थे, पुलिस क्या थी 2-3 हजार थी।
1: सुनीता जी, आपने देखा होगा कि आज कुछ आप जैसे पुलिस फैमिलीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन्होंने पूछा हम किसके पास जाएं न्याय मांगने के लिए, आप उनसे अग्री करते हैं?
2: हम लोग किसके पास जाएं? एक्चुअली बात तो यही है ना कि ये सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ये सबके लिए खड़े हैं, लेकिन इनके लिए कौन है? एट द एंड इनके साथ जो हुआ है, अब ये 1.5-2 महीना का बेड रेस्ट बोल दिया इनको, 1.5-2 महीने के लिए नहीं जा सकते काम पे, घर पे हैं। मेरे को भी पापा को देखना होता है, 10 चीज़ें होती है, घर बार हर एक चीज़ देखना होता है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज मेरे को इनके साथ रहना ज़रूरी है। अभी हमारे तो सारे काम अटक गए ना, हम लोग किसके पास जाएं इन सब के लिए? कोई तो होना चाहिए ना जो हमारे बारे में भी सोचे, हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इतना इनके साथ हुआ, इनको जाके लेडी हार्डिंग में छोड़ दिया गया, कोई आगे देखने के लिए भी नहीं था, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी कोई देखने के लिए नहीं था। जब मेरी सिस्टर वहाँ पहुँची है तब वो लेके गई इनको, ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा के लेके गई कि यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट ऐसे होगा क्या, जिस तरह से रखा हुआ है ऐसे कौन सा ट्रीटमेंट होगा? इतना फ्रैक्चर है इनका, इनके फेस पे 3 फ्रैक्चर हैं, खाली फेस पे 3 फ्रैक्चर है मैम। इनका खाना पीना लिक्विड डाइट पे चल रहा है, खाना पीना सब मुश्किल है, कौन देखेगा इनको? हमारे तो प्रॉब्लम है ही ना, 10 चीज़ें होती हैं देखने के लिए, बाकी सबके लिए सब लोग हैं, लेकिन इनके लिए फाइनली कौन है? कोई नहीं है। तो कुछ तो होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए इसके लिए, और जो भी दंगा जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको प्रोत्साहन ना मिले आगे फिर ऐसे स्टूडेंट्स का बहाना करके या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट का बहाना करके इस तरह से पुलिस वालों पर खुल्लम खुल्ला आतंक ना मचाया जाए। ये तो मैं तो फैक्ट कहूँ तो मेरे को तो ये सब आतंकवादी गतिविधियाँ लग रही है कहीं ना कहीं, और किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है।
1: आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स हम समझ सकते हैं सुनीता जी। हेमेंद्र जी, आप एक पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, अब आप ड्यूटी पे जब जाएंगे तो उसी हौसले के साथ क्या आप जाएंगे ये सब होने के बाद?
0: बिल्कुल, और उससे अच्छा और उससे अच्छी ड्यूटी करने की कोशिश करूँगा। ये तो बाय नेचर एक हादसा हो गया जो मेरे को कई सबक दे गया जिंदगी के। अभी जब भी फिट होके जाऊंगा तो और अच्छे ढंग से अपनी नौकरी को करूंगा।
1: आप कोई संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कुछ मैसेज?
0: मैं तो सभी पढ़ने वाले लिखने वाले सभी बच्चों से कहता हूं कि आप अपने माँ बाप जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, उस पर ध्यान दो। इसमें आपका फ्यूचर ख़राब होता है, कुछ भी होता है, गलती से एक मुकदमा भी लग जाता है तो ना तो आप एक प्राइवेट नौकरी के लिए रह जाते ना एक सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा है उससे अच्छा अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, ताकि कल को एक सुनहरा भविष्य आपके सामने इंतजार कर रहा है, आप उस पे और अच्छा बन के उभरो।
1: हेमेंद्र जी और सुनीता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं दैट यू गेट वेल सून एंड वी विल ट्रैक बोथ साइड्स ऑफ दिस स्टोरी दैट हैज पोलराइज्ड सो मेनी ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। Tamil Nadu chief minister Vijay is finding himself caught in the Kaveri river sharing war between his state of Tamil Nadu and Karnataka, where the Kaveri flows from. A day after the Kaveri river water management authority ordered the release of 3500 cusecs of water daily to Tamil Nadu for 15 days, pro Kannada groups are now targeting Vijay directly. They've removed Vijay's film posters in Bengaluru, and theaters in Karnataka are suspending screenings of Vijay's new film Jananayagan. At Bengaluru's Urvashi theater, screenings of Jananayagan were halted following a police advisory. Kannada organizations and farmers opposed the release of Kaveri water to Tamil Nadu and argued that Karnataka itself is facing a water shortage and that releasing water would adversely affect the state's farmers and agriculture. The Karnataka government, it's a Congress government under DK Shivakumar, has postponed a proposed August 3rd meeting between DK Shivakumar and Chief Minister Vijay from across the border in Tamil Nadu on the Mekedatu project, citing the fact that the atmosphere has become tense and dark. In Tamil Nadu, the DMK mouthpiece has slammed Vijay and said his visit to Karnataka will weaken Tamil Nadu's

0: भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है।
1: सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं, लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है।
2: वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
3: भैया बीजेपी के हो गया?
2: बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
3: भैया बीजेपी के हो गया?
2: बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये बार बार बीजेपी का बोल रहे।
4: A video of a woman protester at Jantar Mantar using derogatory language against the Prime Minister that led to outrage has now been booked. Now, while there is another woman seen recording a reel with security personnel has issued an apology. An FIR has been registered against Ruchika Singh over the alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. The case has now been transferred to Delhi's Sansad Marg police station for further investigation. CJP spokesperson Saurav Das, meanwhile, has condemned the police action, calling the FIRs and criminal proceedings against the protesters illegal. Meanwhile, what we also learn is that Delhi police has intensified its probe after identifying nearly 2,800 individuals and alleged miscreants through facial recognition. Investigators are now tracking masked rioters by analyzing nearly 400 CCTV feeds and gathering digital evidence.
5: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
6: जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में।
4: All right, we have a breaking news coming in at this point in time, and the Prime Minister, we believe, has dropped another Instagram video. This time he has addressed the galis, the abusive language that was directed at him. This is an Instagram video that the Prime Minister has given out. He has said, in fact, that the abusers have never solved anything. He also went on to say that there were some mischievous kids who gave quote-unquote bhaddi gali. He is, for the first time, ladies and gentlemen, the Prime Minister has issued a statement and has addressed the issue of abusive languages, the derogatory languages that were used against him at the protests that took place here in Delhi and in other states as well. The Prime Minister addressing the concern of using of abusive languages has gone ahead to say that there were some mischievous kids who had used derogatory language against me. He has in fact gone ahead to say that it's time that these youth must be directed in the right direction, and he has said that all of them were misguided youth who had abused him. The first statement coming in, ladies and gentlemen, from the Prime Minister, he has called out the abuses that were directed at him, and he has said, in fact, that not just him, his mother was also abused as well. The Prime Minister dropping another video. Let's listen in to that full statement coming in from the Prime Minister.
7: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: All right, that was Prime Minister's Instagram video for the first time he has addressed the abusive, the derogatory language that was used against him in the disguise of the protest that was taking place in Jantar Mantar. For the first time, the Prime Minister has addressed the issue. He's given a statement. He has said that these were the misguided youth of the country who have abused not just him, but also his mother. He's in fact given a very big hint by saying that filing cases against them, filing FIR against them is not the solution, and that these youth must be guided. Vasudha is joining me on the phone line on that note. Vasudha, a very big message coming in from the Prime Minister, where on one hand we see that a zero FIR, that FIR in several other states has been registered, not just against one individual, but against many individuals. The Prime Minister, on the other hand, releasing a video saying that FIR and slapping legal action is no solution against this issue.
8: That's right, Anisha. In fact, this is a timely message because a lot of people have been worried about the kind of crackdown that's going around, because, you know, that also amounts to surveillance. Young people are being having to face legal scrutiny, and that probably is not the way this matter needs to get resolved. The Prime Minister has brought out a video in which he's addressing his own supporters, his own ecosystem, and there's no doubt in the fact that the BJP ecosystem, the larger Sangh Parivar ecosystem, has also been completely disturbed with the fact that the Prime Minister himself has been abused by many of these Gen Z protesters, which is why they have been asking for a crackdown. They've been asking for action against some of those select protesters specifically. Now, the Prime Minister himself has spoken about this. He has in some ways very magnanimously said that, you know, childhood, or when you're young, you make these mistakes, and it's possibly the best time for you to just course correct, and the society should not serious as a cultural shock. In fact, they should embrace these youngsters and teach them what is right and what is wrong. So possibly the Prime Minister is taking this view that it's time to end this, to resolve this, not let this escalate, because you file one FIR, somebody else is going to file two other FIRs.

0: शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है।
1: सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है।
2: पहले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
3: भैया बीजेपी के हो गया?
2: बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोलते हैं। पहले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
3: भैया बीजेपी के हो गया?
2: बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी का बोलते हैं।
4: A video of a woman protester at Jantar Mantar using derogatory language against the Prime Minister that led to outrage has now been booked. Now, while there is another woman seen recording a reel with security personnel, has issued an apology. An FIR has been registered against Ruchika Singh over the alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. The case has now been transferred to Delhi's Sansad Marg Police Station for further investigation. CJP spokesperson Saurav Das, meanwhile, has condemned the police action, calling the FIRs and criminal proceedings against the protesters illegal. Meanwhile, what we also learn is that Delhi Police has intensified its probe after identifying nearly 2,800 individuals and alleged miscreants through facial recognition. Investigators are now tracking masked rioters by analysing nearly 400 CCTV feeds and gathering digital evidence.
5: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पर गाली देते हैं। आपने बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
6: जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं, वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में।
4: All right, we have a breaking news coming in at this point in time, and the Prime Minister, we believe, has dropped another Instagram video. This time he has addressed the galis, the abusive language that was directed at him. This is an Instagram video that the Prime Minister has given out. He has said, in fact, that the abusers have never solved anything. He also went on to say that there were some mischievous kids who gave quote-unquote bhaddi gali. He is, for the first time, ladies and gentlemen, the Prime Minister has issued a statement and has addressed the issue of abusive languages, the derogatory languages that were used against him at the protest that took place here in Delhi and in other states as well. The Prime Minister, addressing the concern of using of abusive languages, has gone ahead to say that there were some mischievous kids who had used derogatory language against me. He has in fact gone ahead to say that it's time that these youth must be directed in the right direction, and he has said that all of them were misguided youth who had abused him. The first statement coming in, ladies and gentlemen, from the Prime Minister, he has called out the abuses that were directed at him, and he has said, in fact, that not just him, his mother was also abused as well. The Prime Minister dropping another video. Let's listen in to that full statement coming in from the Prime Minister.
7: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है।

0: उनके यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी।
1: 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं।
2: शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है।
3: सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि देयर वर स्कैथिंग अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, सोशल मीडिया वन साइडेड दैट इसमें एक्सेसेस हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, और आई मे क्लियर यू इन क्लियर टर्म्स कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो आपको स्टेटमेंट होगी वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस में बहुत पर्सनल है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है।
4: घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
5: भैया बीजेपी के हो गया?
4: नहीं, बीजेपी का पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी के बोल रहे हैं। घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
5: भैया बीजेपी के हो गया?
4: नहीं, बीजेपी का पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार बार बीजेपी के बोल रहे हैं।
6: A video of a woman protester at Jantar Mantar using derogatory language against the Prime Minister that led to outrage has now been booked. Now, while there is another woman seen recording a reel with security personnel, has issued an apology. An FIR has been registered against Ruchika Singh over the alleged objectionable and abusive sloganeering targeting the Prime Minister. The case has now been transferred to Delhi's Sansad Marg Police Station for further investigation. CJP spokesperson Saurav Das, meanwhile, has condemned the police action, calling the FIRs and criminal proceedings against the protesters illegal. Meanwhile, what we also learn is that Delhi Police has intensified its probe after identifying nearly 2,800 individuals and alleged miscreants through facial recognition. Investigators are now tracking masked rioters by analysing nearly 400 CCTV feeds and gathering digital evidence.
7: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज़ चलते फिरते लोग यहाँ पर गाली देते। आपने बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उस पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
8: जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में।
6: Alright, we have a breaking news coming in at this point in time, and the Prime Minister, we believe, has dropped another Instagram video. This time he has addressed the galis, the abusive language that was directed at him. This is an Instagram video that the Prime Minister has given out. He has said, in fact, that the abusers have never solved anything. He also went on to say that there were some mischievous kids who gave quote-unquote bhaddi gali. He is, for the first time, ladies and gentlemen, the Prime Minister has issued a statement and has addressed the issue of abusive languages, the derogatory languages that were used against him at the protests that took place here in Delhi and in other states as well. The Prime Minister, addressing the concern of using of abusive languages, has gone ahead to say that there were some mischievous kids who had used derogatory language against me. He has in fact gone ahead to say that it's

0: time that these youth must be directed in the right direction. And he has said that all of them were misguided youth who had abused him. The first statement coming in, ladies and gentlemen, from the Prime Minister, he has called out the abuses that were directed at him. And he has said, in fact, that not just him, his mother was also abused as well. The Prime Minister dropping another video. Let's listen in to that full statement coming in from the Prime Minister.
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: All right, that was Prime Minister's Instagram video for the first time he has addressed the abusive, the derogatory language that was used against him in the disguise of the protest that was taking place in Jantar Mantar. For the first time, the Prime Minister has addressed the issue. He's given a statement. He has said that these were the misguided youth of the country who have abused not just him, but also his mother. He has in fact given a very big hint by saying that filing cases against them, filing FIR against them is not the solution, and that these youth must be guided. Vasudha is joining me on the phone line on that note. Vasudha, a very big message coming in from the Prime Minister, where on one hand we see that a zero FIR, that FIR in several other states has been registered, not just against one individual, but against many individuals. The Prime Minister, on the other hand, releasing a video saying that FIR and slapping legal action is no solution against this issue.
2: That's right, Tanisha. In fact, this is a timely message because a lot of people have been worried about the kind of crackdown that's going around, because you know that also amounts to surveillance. Young people are being having to face legal scrutiny, and that probably is not the way this matter needs to get resolved. The Prime Minister has brought out a video in which he's addressing his own supporters, his own ecosystem, and there's no doubt in the fact that the BJP ecosystem, the larger Sangh Parivar ecosystem, has also been completely disturbed with the fact that the Prime Minister himself has been abused by many of these Gen Z protesters, which is why

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।